एफएम बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

0: इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। लहराएगा तिरंगा अब पूरे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर।

ये देशभक्ति रचना थी समूह स्वर में। आइए श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचना।

पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। रचना थी पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत निर्देशन श्रीनिवास खाले का था। आराधना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

स्वरा शर्मा और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। इस भक्ति गीत को लिखा था रवि चोपड़ा ने और धुन तैयार की थी शिवा चोपड़ा ने। श्रोताओं, बच्चों को अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा का पाठ पढ़ाने के बजाय जहाँ तक हो सके उन्हें दूसरों के साथ बेहतर काम करने की व्यवहारिक बातें सिखाई जानी चाहिए। श्रोताओं, ऐसा करने से एक साथ बढ़ने की भावना के विकास से उनमें सकारात्मक सोच का विकास होता है।

महेंद्र कपूर और साथियों का गाया पारंपरिक भजन आपने सुना। आइए सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में आखिरी भक्ति रचना।

0: जितेंद्र रघुवंशी की भक्ति रचना आपने सुनी हरविंदर बब्बी के संगीत निर्देशन में, मधु गिरोत्रा और साथियों के स्वर में, और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है गर्मी में पशुओं की देखभाल। वाचक हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार भाई। देखा गर्मी के असर अब तेज होए लगे है। अब अवैया दिन में कई पई तापमान 45-46 और ऊपर भी चले जाते। ऐसा भीषण गर्मी के असर सिर्फ मनखे ऊपर नहीं बल्कि गाय भैंस और अन्य पालतू पशु मन ऊपर भी पड़ते। ज्यादा तापमान के कारण पशु मन में हीट स्ट्रेस, भूख के कमी, पानी की अधिक आवश्यकता, शरीर में कमजोरी, सांस फूलना और दूध उत्पादन में गिरावट जैसन समस्या देखे ल मिलते। अगर समय में उचित देखभाल नहीं करे जाए तब पशु मन बीमार घलो पड़ सकते हैं, जेकर से पशुपालक ला आर्थिक नुकसान उठाए ला पड़ते। एकरे बर गर्मी के मौसम में पशुपालक मन बड़े जरूरी हो जाते के उमन अपन पशु मन ला ठंडा और हवादार जगह में रखे, पर्याप्त मात्रा में सफा और ठंडा पानी उपलब्ध करावे, हरियर चारा के संग संतुलित आहार देवे और दोपहर के तेज घाम से बचाए बर छायादार व्यवस्था करें। एकर अलावा पशु मन ला समय समय में नहलाए के शेड में पानी की छिड़काव करना और खनिज मिश्रण देना भी लाभदायक रहते। सामान्य से ज्यादा तापमान की स्थिति में पशु मन ला हीट स्ट्रेस उत्पन्न होते, जेकर से उकर शारीरिक तापमान नियंत्रण प्रणाली प्रभावित हो जाते। वैज्ञानिक मन के अनुसार जब तापमान आर्द्रता सूचकांक सामान्य सीमा से ऊपर जाते तब पशु शरीर से गर्मी के उत्सर्जन सही ढंग से नहीं कर पावे, जेकर से शरीर के आंतरिक तापमान बढ़ जाते और श्वसन दर तेज हो जाते। ये दौरान पशु चारा कम खाते, जेकर से ऊर्जा और

0: पोषक तत्व की कमी हो जाते हैं और पाचन क्रिया धीमा पड़ जाते हैं। उच्च तापमान के कारण पानी की जरूरत बढ़ जाते और पर्याप्त पानी नहीं मिले त शरीर में पानी के कमी हो जाते जेखर से रक्त संचार प्रभावित होते और शरीर के अंग में अतिरिक्त दबाव पड़ते। शोध यह बताते कि सामान्य से अधिक तापमान से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते जेखर से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाते और पशु मन संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाते। एकरे संग ही प्रजनन हार्मोन घलो प्रभावित होते जेखर से गर्भधारण दर कम हो जाते और दूध उत्पादन घलो में गिरावट आते। ए प्रकार सामान्य से ज्यादा तापमान पशु के श्वसन पाचन हार्मोनल संतुलन प्रतिरक्षा क्षमता और उत्पादन जम्मो जिनिस जम्मो चीज में प्रतिकूल प्रभाव डालते जेखर से ओकर स्वास्थ्य और हमार आर्थिक उत्पादन दोनों प्रभावित होते। कुछ व्यवस्था करके हम गर्मी के समय में भी अपन पशु ला हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। जैसे भाई चराई के समय गर्मी में पशु मन ला चराई में भेजे के समय बड़ महत्वपूर्ण होते। दिन के समय तो भाई ज्यादा गर्मी है तो भाई बिहान ने भेज दी या संध्या के समय भेज दी तो ये व्यवस्था हो सकते है। आहार प्रबंधन की व्यवस्था बढ़िया ढंग से करी, नमक ला पानी के संग दी, पेज ला पिलाई, हरियर चारा की व्यवस्था करी। गर्मी के मौसम में पानी के नियमित और पर्याप्त आपूर्ति बड़ जरूरी होते। उच्च तापमान में पशु के शरीर ज्यादा पसीना और श्वसन के माध्यम से पानी सोख लेते जेखर से डिहाइड्रेशन के खतरा बढ़ जाते। डॉक्टर मन मनखे मन ला भी कहते कि भाई ORS घोल ला, भाई आपके शरीर से नमक निकल गए तो काम नहीं चले, शरीर में हर खनिज के उतके जरूरत है। तब पशु मन ला भी हम नमक के गुड़ के व्यवस्था करत रही देत रही, ये प्रकार से ओकर शरीर ला हम ठंडा रख सकत हन। बिहन्ना नहीं तो संझा मन पानी के फव्वारा, अगर पानी की व्यवस्था है पंप की व्यवस्था है तो हमन उमन ला नहवा सकत हन व्यवस्था देख के। फर्श की व्यवस्था है तो ज्यादा गर्मी झन हो ओकर बर चारों कती ले ढांक दी, फट्टा लगा दी और पानी के फव्वारा मार दी जेखर से हवा के जिन आवागमन है तेन ठंडा हो जाये गर्म हवा तो पशु मन ला आराम मिल जाये। ये प्रकार से छोट छोट अगर व्यवस्था हम करे तो गर्मी के मौसम में पशु मन के देखभाल बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। काबर पशु मन के उत्पादन से हमन ला लाभ मिलते हैं। राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात कार्यक्रम में अभी आप गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर जानकारी सुन रहे थे। वाचक थे अभिनव गौरहा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं बशीर अहमद और रविंद्र साठे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल

यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे बशीर अहमद और रविंद्र साठी। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में सुनिए कर्तव्य पथ विषय पर डॉक्टर कुसुम ठाकुर का आलेख।
1: भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हुए कहा है, हमें अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। चाहे कर्तव्य पथ कितना ही कंटकाकीर्ण क्यों न हो, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने माता पिता, समाज और देश का नाम उजागर करके अपनी एक अलग पहचान बनाता है और संसार को दिशा प्रदान करता है। ऐसी दिशा जो अभूतपूर्व हो, ये तभी संभव है जब व्यक्ति चिंतन मनन के द्वारा अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करे। एक चिंतक ने ठीक ही कहा है, हे मनुष्य, तुम अपने आप को जानो, अपनी स्थिति को स्वीकार करो और फिर अपने आप को पूर्ण निष्ठा के साथ अभिव्यक्त करो। दूसरों के बनाए हुए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी अभूतपूर्व क्षमताओं को अपने आप में समेटे हुए ही इस संसार से विदा हो जाता है। संसार में जितने मनुष्य हैं, विकास के उतने ही मार्ग हैं। तब कौन किसके पीछे चले और कौन किसकी माने, सभी सबको देखे, सुने और स्वीकार करें, परंतु करें वही जो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप हो, जिसको करने के लिए हमारा अंतःकरण कहे।

0: महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर शरशय्या पर विश्राम करते हुए भीष्म पितामह से धर्म के स्वरूप पर अनेक प्रश्न करते हैं, तब भीष्म पितामह ये निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुह्यायाम् महाजनो येनय गतः सपन्थ, अर्थात धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वो गुफा में छिपे हुए पदार्थ के समान है। जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही सदमार्ग है। कौन नहीं जानता है कि प्रत्येक महापुरुष अपने स्वयं के निर्धारित और निर्मित स्वतंत्र मार्ग से गया है। इसलिए धर्म का सार तत्व यही है कि हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य पथ स्वयं निर्धारित करें, भाग्य और भगवान अपना काम करें और हम अपना काम करें। हमारा श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारी अंतः प्रेरणा है। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी काव्य में धनुर्धर लक्ष्मण के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन कराया है। मेरे मन में एक ओर है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों की सुविचारी। हम अपने गुरु स्वयं हैं, हम अपने प्रकाश स्वयं हैं, हम स्वयं अपना दीपक लेकर निकलें, हमारा मार्ग प्रकाशित होगा, अन्य का मार्ग प्रशस्त होगा। अपनी रुचियों को पहचानकर उन्हें उचित दिशा देने से विशेष सुख मिलता है। यदि आप में कलाकार, चित्रकार, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता छिपा हुआ है तो उसको जगाइए। अपने व्यक्तित्व की गहरी मांगों को तन्मयता के साथ पूरा करके उसका विकास करना मानो ईश्वर की योजना को पूरा करना है। हमारे व्यवहार और कार्य पद्धति की नवीनता देखकर कुछ लोग हमारी निंदा कर सकते हैं, हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। निंदक को धन्यवाद दो कि वो तुम्हारे मार्ग में पड़े हुए अवरोधों के प्रति सजग कर रहा है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कहानी है। एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने हाथ में लालटेन लिए चला जा रहा था। राहगीर उस पर हंसने लगे। उनमें से एक ने उस नेत्रहीन व्यक्ति से प्रश्न किया कि बाबा, आपको दिखाई तो देता नहीं है, फिर आपने हाथ में लालटेन क्यों रखा है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अपना प्रकाश सदैव अपने साथ रखो। इस लालटेन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन न हो तो कोई बात नहीं, परंतु अन्य का मार्गदर्शन तो हो ही जाएगा। मेरी लालटेन की रोशनी देखकर वे मुझसे टकराएंगे तो नहीं? हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के विकास का मार्ग पृथक और स्वतंत्र है। हम में से प्रत्येक को अपने विकास का मार्ग स्वयं निर्धारित करना है और उसी पर आगे बढ़ना है। एक पर्वतारोही की भांति हमें अपनी कुदाल लेकर अपना मार्ग स्वयं बनाना है और उस मार्ग पर ही चलकर पर्वत के शिखर पर विजय प्राप्त करनी है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप कर्तव्य पथ विषय पर डॉक्टर कुसुम ठाकुर का आलेख सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। सुबह 7:10 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम सुबह 7:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से महावीर बरगाह की बातचीत सुबह 10:00 आओ बच्चों कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय हंसी हमारे जीवन की सबसे सरल और अनमोल खुशी है। क्रम होगा आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस की खुशी में बच्चों के संदेश एवं प्रस्तुति। सदाबहार नगमे सुबह 7:40 पर और नए तराने आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज का ट्रैफिक अपडेट आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। और एक बार फिर से आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम में सुबह 10:30 से 11:00 के बीच। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:00 से 9:55 तक, 11:00 से 11:55 तक, 12:00 से शाम 5:00 तक और फिर रात 9:15 से रात 11:00 तक। विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:30 पर। रायपुर केंद्र से ही शाम 6:05 पर रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रमबेरा के गुट का प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत भी आप सुनेंगे और इसके अलावा सुनेंगे मौसम और मंडी की जानकारी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर, ईमेल करें गीत सुने शाम 5:35 पर, शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे। रजनीगंधा का प्रसारण समय रात 8:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 वादनादारभ्य सायं 6 वादनं यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण 24 परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया

0: की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: नमस्कार, प्रतिदिन की तरह अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। आकाशवाणी बिलासपुर के दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर में मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शहर के 19 परीक्षा केंद्रों में नीट की प्रतियोगी परीक्षा बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सभी को शुभकामनाएं। साथ ही सभी प्रतियोगियों से अनुरोध है समय रहते परीक्षा केंद्रों में पहुंचना सुनिश्चित करें और परीक्षा केंद्र के बाहर अपने वाहन सुव्यवस्थित पार्किंग में ही रखें, ना कि सड़कों के किनारे अस्त व्यस्त। तथा परीक्षा के समापन पर एकाएक सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र से बाहर आने पर सड़कों में यातायात की व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है सड़क में एक के पीछे एक धीरे धीरे आगे बढ़े, ओवरटेक बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से न तो आप आगे बढ़ सकेंगे और न ही सड़क में चल रहे अन्य लोग। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कतार में आगे चलें। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहर की सभी सड़कों में दोनों किनारों पर पीली पट्टी बनी होती है। जब भी आप शहर में किसी भी वाहन से आए तब अपना वाहन

0: हमेशा इस पीली पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। यदि आपका वाहन पीली पट्टी के अंदर खड़ा है तो इससे सड़क संकीर्ण होती है, यातायात बाधित होता है, लोग परेशान भी होते हैं और ऐसी स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके वाहन की फोटो भी हमारा कैमरा खींचकर चालान के साथ आपके पास भेज देगा, जिसके लिए आपको जुर्माना भी पटाना होगा। अतः काम ऐसा करें जिसका परिणाम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।

0: है निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी।

आकाशवाणी रायपुर है, देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री अरविंद माथुर से ली गई भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी रायपुर के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री अरविंद माथुर। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीपक जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अरविंद जी, आपका नाम आकाशवाणी रायपुर के श्रोता भी वर्षों पहले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुना करते थे और इस नाम को और इस आवाज को सुनकर उन्हें फिर से वही पुराने दिन याद आ रहे होंगे जब आप आकाशवाणी रायपुर में छाए रहते थे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका जो रिश्ता है वो कितना पुराना है?
1: दीपक जी, बहुत पुराना रिश्ता है, यूँ कह सकते हैं कि बचपन से रिश्ता है। और आज रिटायरमेंट के बाद, इतने बरस बाद जब आकाशवाणी के स्टूडियो में घुसा, तो एक अलग सी खुशबू जो स्टूडियो की रहती है, जो वर्षों तक मेरे पास रही, मेरे साथ रही, आज एक बार फिर

ये खुशबू आई और आप लोगों को धन्यवाद कि आपने याद किया। बचपन से हम लोग रेडियो सुनते रहे हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और गांव में रहते थे हम लोग, तो वहाँ रेडियो ही एक सहारा था। तब वो बैटरी वाला रेडियो होता था, तो तब से रेडियो लगातार सुन रहे। फिर जयपुर में उनका स्थानांतरण हुआ तो जयपुर आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला और तब से मेरी इच्छा थी कि मैं रेडियो से जुड़ा रहूं। और इत्तेफाक की बात है कि फिर नौकरी भी आकाशवाणी में लगी।

0: इच्छा थी कि मैं रेडियो से जुड़ा रहूं, और इत्तेफाक की बात है कि फिर नौकरी भी आकाशवाणी में लगी, तो बहुत पुरानी बात है। और उस समय देखिए रेडियो जो था मशीन नहीं मानी जाती थी, घर का सदस्य होता था रेडियो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: रेडियो का कमरा है, रेडियो कितने बजे सुनेंगे
1: जी,
0: ये सारी बातें होती थी। मतलब रेडियो ने एक इतनी अच्छी जगह बनाई थी आकाशवाणी ने विशेषकर, क्योंकि उस समय आकाशवाणी और विदेशी रेडियो आते थे, बाकी तो कोई रेडियो सुनाई देते नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही बढ़िया लगता था कि हम लोग रेडियो सुनते हैं। और हमारे घर में एक कल्चर था, हमारे फादर जो थे वो पूछते थे आज क्या न्यूज़ सुनी तुमने, न्यूज़ रीडर्स के नाम क्या थे, ये सब पूछते थे। तो एक अलग तरह का हमारे जुड़ाव हो गया था, यानी देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी वगैरह जो थे बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। तो एक लगता था कि हम भी ऐसा बोल सकते हैं क्या,
1: क्या
0: मतलब मन में था कि ये बोलते। और मेरे फादर ये कहते थे कि टू बी ए गुड ऑरेटर, अगर आपको बोलना है यू नीड टू बी ए गुड लिसनर।
1: बिल्कुल सही,
0: अगर आपको भाषण देना है, आपको कुछ वक्तव्य देना है, कुछ बोलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सुने,
1: बिल्कुल
0: अच्छी तरह से सुने। और ये हमारे घर का कल्चर था कि मेरे परिवार के सभी लोग संगीत से जुड़े थे, सभी डॉक्टर थे लेकिन सब संगीत से जुड़े थे। और रेडियो उनके लिए एक टाइम वो था कि सुबह 8 बजे का ये कार्यक्रम है तो तब तक तैयार होकर मेडिकल कॉलेज जाना है, ये सब बातें होती। तो रेडियो से तो हमारा बहुत पुराना नाता रहा। फिर उसके बाद इंदौर आए तो इंदौर में भी रेडियो से जुड़े रहे, किशोर सभा, बच्चों का कार्यक्रम, ये सब होता था, उसमें हम लोग लगातार भाग लेते थे। जब रेडियो पे बोलते थे क्यों, तो आस पड़ोस के लोग सुनते थे, टीचर सुनते थे, सब लोग सुनते थे, तो एक अलग महत्व होता था। यानी उस समय क्या था, रेडियो जो है फिल्मी दुनिया के बाद नंबर वन ग्लैमर था।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी।
0: और रेडियो के बोलते हैं ना कि जो उद्घोषक थे या जो प्रस्तुतकर्ता रहते थे वो लोगों के दिल में जगह बनाते थे और सम्मान के पात्र होते थे, तो एक बहुत बड़ी बात थी ये।
1: अरविंद जी, उस दौर में, जिस दौर में रेडियो की लोकप्रियता फिल्मों की तरह थी, आपने बताया, उस दौर में आपकी आवाज उद्घोषक के तौर पर किस आकाशवाणी केंद्र से सबसे पहले गूंजी?
0: युवाणी कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इंदौर में मैं युवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करता था और उसके लिए फीचर वगैरह बनाता था
1: जी।
0: मेरी रुचि न्यूज की तरफ थी तो मुझे कहा जाता था स्पोर्ट्स का ये फीचर बनाओ, किसी का इंटरव्यू करो, इस तरह से मैं रेडियो से बहुत ज़्यादा जुड़ा। उसके बाद अखबारों में काम किया और इत्तेफाक की बात है कि उन्हीं दिनों आकाशवाणी के कई केंद्र खुले, छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर खुला था, जगदलपुर खुला, छत्रपुर खुला इधर मध्य प्रदेश में, तो बहुत सारी वैकेंसी निकली थी। तो मुझे कहा कि भाई भरो तो।
1: अच्छा,
0: तो हमने भी फॉर्म भर दिया।
1: कौन से आकाशवाणी केंद्र में पहले आपने भरा फॉर्म?
0: आकाशवाणी का उस समय इंटरव्यू मध्य प्रदेश के लिए पूरे भोपाल में होता था।
1: अच्छा,
0: उस समय के महान ब्रॉडकास्टर शिंगलू साहब थे
1: जी, जी,
0: तो शिंगलू साहब ने मेरा चयन किया था और फिर अंबिकापुर पोस्टिंग हुई और दूसरी जगह भी हुई थी पोस्टिंग, लेकिन फिर अंबिकापुर क्योंकि पहले था इसलिए। और इत्तेफाक की बात यह कि अमीर हनफी साहब
1: अंबिकापुर में थे उस समय,
0: अंबिकापुर में उन्होंने किया
1: जी।
0: और 1976 की बात है, 26 दिसंबर 1976, यानी 50 साल होने वाले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अर्धशताब्दी
1: जी, जी
0: बहुत
1: जी,
0: बड़ी चीज होती
1: बहुत है बड़ी बात जी।
0: तो 26 दिसंबर 1976 को इसका उद्घाटन हुआ था और वहीं, और इत्तेफाक की बात है पहली आवाज, पहला अनाउंसर मैं ही था।
1: क्या बात,
0: अंबिकापुर का।
1: वाह वाह वाह।
0: तो 26 दिसंबर को मतलब ऑफिशियल तौर पर गया, उसके पहले ट्रायल होता था वो करते थे। तो 26 दिसंबर 1976 को ये हमारा शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम किए, लगातार कई प्रोग्राम किए। अमीर हनफी साहब कुछ नया करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि सब जगह सारे कार्यक्रम होते हैं, फरमाइशी कार्यक्रम है, किसान सभा है, ये सब, विज्ञान का कार्यक्रम बहुत कम जगह होता है
1: जी,
0: और सरगुजा में विज्ञान का कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रतिदिन 10 मिनट का विज्ञान का कार्यक्रम हम लोग करते थे, पूरे इंडिया में कहीं नहीं था जो प्रतिदिन सुबह ये कार्यक्रम होता।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इसके लिए हमारे केंद्र को सम्मान पत्र भी मिला
1: जी।
0: आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। अंबिकापुर स्टेशन जब शुरू हुआ तो अज्ञानता थी, कम जानकारी थी, तो जब शुरू हुआ तो लोग आके बाहर खड़े होकर देखते थे कि ट्रांसमीटर से आवाज कैसे निकलती है
1: जी जी जी।
0: मतलब ये
1: क्या बात,
0: बहुत वैसी बात है,
1: वाकई
0: उत्सुकता थी,
1: जिज्ञासा
0: थी, ये सब था,
1: जादू की तरह था।
0: और आपको बताऊं कि वहां पर कुछ बहुत होशियार लोग भी थे, तो वो बोलते थे ट्रांजिस्टर ले आओ, अंबिकापुर लगा देते हैं इसमें।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ये भी था,
1: इस तरह की सेवाएं।

0: भी जाती
1: इस तरह की सेवाएं दी जाती और उसका कुछ वो
0: शुल्क
1: भी लेते थे। फिर रेडियो से हम लोगों ने पब्लिसिटी की कि ऐसा कुछ नहीं, आप इस मीटर पे लगाइए, फिर उनको समझ में आया। तो ये अच्छा क्या है दीपक जी, आपने एक वो जगजीत सिंह की एक गजल सुनी होगी, दुनिया क्या जादू का खिलौना है।
0: जी जी जी,
1: तो मैं सोचता हूँ कि जादू का खिलौना रेडियो ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो गजल यहाँ पर बिल्कुल सही लगती है, कोई भी बजा सकता है साहब।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ अनपढ़ हो या कोई भी हो, और नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है
0: जी।
1: तो बिलासपुर में उसके बाद मैं जब आया था तो आकाशवाणी का बिलासपुर स्टेशन जब शुरू हुआ, पहला अनाउंसर उसका मैं ही था।
0: अच्छा।
1: वहां पर एक महिला थी, वो नेत्रहीन थी और पहली महिला थी जिन्हें PhD मिली, नेत्रहीन महिला।
0: क्या बात।
1: तो हमने हमारा कार्यक्रम जब शुरू किया उन्हीं की इंटरव्यू से करा।
0: वाह,
1: ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी,
0: बहुत प्रेरणा की बात थी जी।
1: और इस बात की बात है कि जसदेव सिंह जी के साथ काम किया मैंने, जो बहुत मानी हुई हस्ती।
0: हाँ माथुर साहब, ये आपने जसदेव सिंह साहब का नाम लेते ही हमको आपके पूरे करियर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष की याद दिला दी, और वो पक्ष है खेलों का।
1: जी।
0: हमने सुना है कि खेलों में आपकी बड़ी रुचि रही,
1: बहुत ज्यादा रुचि रही थी।
0: तो खेलों से संबंधित प्रसारण के कौन कौन से आपके अनुभव रहे?
1: एक तो ये था कि वहां पर फुटबॉल मैच होता था अंबिकापुर,
0: अंबिकापुर जी।
1: तो हमने साहब से कहा, हमारे अनफी साहब से, कि हम इसकी कुछ कमेंट्री करें, रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करके लाएं और फिर एडिटिंग करके सुनाएं, क्योंकि लाइव तो होता नहीं था उस समय। तो उन्होंने कहा, तो वहां के लोगों ने ऐसी व्यवस्था की, मंच तो था नहीं, तो एक ट्रक को खड़ा कर दिया और उसमें हमारे टेबल वगैरह लगाई और हम लोग वहां रिकॉर्डिंग करते और उसको घर वहां ऑफिस लाते, एडिट करके दूसरे दिन सुबह ब्रॉडकास्ट करते। तो बहुत लोग सुनने लगे, मतलब बहुत पॉपुलर हुआ ये
0: जी।
1: इसी तरह और भी ये थे, और जसदेव सिंह जी का मैं जिक्र करा तो उन्होंने, उनके साथ ट्रेनिंग करने का सौभाग्य मिला पटियाला में, एशियाड के पहले, एशियाड में हम लोग गए थे वहां पे कमेंट्री करने,
0: एशियाड 82
1: में
0: जी।
1: तो उन्होंने हमारे को बहुत सिखाया, डी मेलो साहब ने, इनने, कृष्ण कुमार भार्गव। जसदेव सिंह जी कहते थे कि एक ही सूत्र जानिएगा, इतने विस्तार से और इतने सही बताइए कि जो कान है वो आंख बन जाए।
0: बिल्कुल,
1: ये रेडियो का सिद्धांत है, यानी इतना। और देखिए उनकी एक परंपरा थी, वो जब भी कहीं प्रोग्राम शुरू करते थे सबसे पहले उस शहर का, उस जगह का तापमान जरूर बताते।
0: अच्छा जी जी जी,
1: बोलते ये बहुत बड़ी चीज है
0: जी जी
1: कि आप तापमान बताएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने उनसे सीखी थी बहुत ज्यादा।
0: माथुर साहब, आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की थी खेलों की, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: एशियाड की थी रिपोर्टिंग की, नेशनल गेम्स की जो एशियाड में मशाल लेकर जब जाते थे शक्ति स्थल से,
0: जी जी,
1: तो उसकी कमेंट्री भी मैंने लाइव की। उसके अलावा मतलब एशियाड में तो कई प्रोग्राम थे, इंटरव्यू थे, ये सब कुछ किया था, वो लगातार किया था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मैं था और शूटिंग की कमेंट्री के मतलब मेरे लिए थी, और भी दो लोग थे।
0: हाँ।
1: तो हम सब ये जो बड़े नामी शूटर्स हैं इंडिया के, नारंग हैं और ये अभिनव बिंद्रा वगैरह, इन सबसे लगातार इंटरव्यू करके और हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे। तो 10 दिन हम लोगों ने शूटिंग का वो किया था, तो ये बड़े रुचि थी। उसके अलावा फुटबॉल वगैरह की कमेंट्री के। फिर एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वेस्ट इंडीज की, कैरेबियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, उनके को एक स्कोरर चाहिए था। मैं इंदौर में था तो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा था और स्कोरिंग वगैरह करता था। तो मैं तब यहाँ अंबिकापुर आ गया था, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था कि कैरेबियन ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको ऑफिशियल स्कोरर के रूप में रखा जाता है। तो मैंने किया, और उस समय लॉयड कैप्टन थे और ये सब ग्रिफिथ वगैरह सब थे, तो उनके साथ मैं रहा 2 दिन, उनसे समझा बहुत सारी बातें। और उसके बाद लॉयड वगैरह 2-3 अलग अलग शहर गए जब क्रिकेट खेलने, तो उनके ब्रॉडकास्टिंग टीम में मेरे को भी ले गए थे।
0: अच्छा।
1: तो उस समय था अलग ही मामला था, ये सारे खिलाड़ियों से बहुत अच्छा, कालीचरण,
0: अच्छा
1: कालीचरण इंदौर में उन्हीं के साथ आए थे, तो उनको लता मंगेशकर जी का भजन वाला या कोई सा रिकॉर्ड खरीदना था
0: जी,
1: भजन वाला था या कोई रिकॉर्ड लता मंगेशकर का लेना था। तब मेरे को मिस्टर MM जगदाले जो क्रिकेट के वो थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए और कालीचरण जी को रिकॉर्ड खरीदवाइए।
0: जी जी जी, जी, जी।
1: तो इतना मतलब हमें महसूस हुआ कि भारतीय संगीत कितना पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, वो लोग सुनते थे लगातार।
0: जी, जी, जी।
1: और उस समय तो रिकॉर्ड ही थे, तो रिकॉर्ड खरीद के ले गए। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मैंने अंबिकापुर का बताया कि वहां पर थोड़ा सा विज्ञान की कमी थी, उस समय स्काई लैब गिरने वाला था
0: जी।
1: तो वहां के लोग जो थे वो भेड़ बकरी वगैरह गाय वाय बेच रहे थे, वहां अफवाह फैल गई कि गिरने वाला, बेच दो और खाओ पियो मसरो बन।

0: ना कौन जीवन का वो आनंद
1: जी जी जी
0: तो पूरा एक अलग परेशानी थी जब स्काईलैब गिर रहा था, तो वाकई एक अलग माहौल था
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने कलेक्टर से बात की कि आप हमारे को रोज़ सूचना दीजिएगा कि क्या हो रहा है, लोगों को किस तरह से रोकना है, क्या उनके इंटरव्यू भी करें। तो हम लोगों ने फिर स्काईलैब का कार्यक्रम किया, रोज़ कार्यक्रम करते थे सुबह कि ऐसा कुछ नहीं, फिर बताते थे भाई 75% तो पानी है, पानी में ही गिरेगा, 25% तो बच गए आप लोग इस तरह से
1: बिल्कुल।
0: फिर हमने जिस दिन स्काईलैब गिरने वाला था तो मैंने और रजत सेन गुप्ता जी हम दोनों ने लाइव प्रोग्राम किया विदेशी रेडियो से सब सूचनाएं सुन के
1: जी।
0: और रात को 12-1 बजे तक वो जब तक गिरा नहीं तब तक हम सूचना देते रहे कि सब ठीक है, क्योंकि बहुत हड़कंप था, पूरा जागरण जैसा हो गया था कि स्काईलैब गिरा,
1: काफी काफी उसकी दहशत छाई हुई थी। जी जी।
0: तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए जो अच्छा लगा, और आकाशवाणी ने तो खेल की दुनिया में तो काफ़ी नाम कमाया। हिंदी कमेंट्री जो हुई वो तो महिलाओं के पहुंच में हो गई, और उसने देखिए हिंदी कमेंट्री ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत को मिलाया
1: जी,
0: क्योंकि हिंदी में कमेंट्री होती थी, लोग सुनने लगे थे, समझने लग गए थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: गिनती सीख गए, और महिलाएं किचन में ट्रांजिस्टर रख के कॉमेंट्री जरूर सुनती थी
1: जी।
0: तो ये बहुत बड़ी सफलता आकाशवाणी की, जिसने भाषा को बहुत सरल करा और घर घर पहुँचाया।
1: अरविंद जी, आपका सफर आकाशवाणी अंबिकापुर से शुरू हुआ, फिर आप आकाशवाणी बिलासपुर में रहे, आकाशवाणी रायपुर में भी आपने कई वर्ष बिताए हैं। अगर आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की बात करें तो ऐसी कोई रोमांचक घटना जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करने वाली रही है तो कौन सी घटना आप बताना चाहेंगे?
0: एक घटना तो ये थी कि चापा रेल दुर्घटना हुई थी
1: जी,
0: तब आकाशवाणी ने बिलासपुर ने बहुत काम किया, बहुत कम स्टाफ था लेकिन कैजुअल अनाउंसर और युवाणी के लोगों को लेकर चापा से बराबर सूचना लेते थे, रिकॉर्डिंग करते थे और ये बतलाते थे कि कौन से हॉस्पिटल में कौन भर्ती है। ये लोग हम बाकायदा सुबह सूचना देते थे, दोपहर में देते थे, क्योंकि बहुत हड़कंप मच गया था कि कहाँ जाए, कौन से हॉस्पिटल में। तो जाके हमारे जो साथी थे युवाणी वगैरह के, वो जाके नाम पता पूरा नोट करके लाते थे और हम लोग उसको प्रसारित करते थे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मिसेज माथुर, श्रीमती कामनी माथुर ने उस कार्यक्रम का संचालन किया और दिल्ली से और भोपाल से उनको बहुत शाबाशी मिली ही हो क्या।
1: आपने जिनका नाम लिया श्रीमती कामिनी माथुर, आकाशवाणी की पूर्व कार्यक्रम अधिशासी रही हैं और आपकी जीवन संगिनी भी रही हैं, तो ऐसे जोड़े आकाशवाणी में बहुत कम पाए जाते हैं जो विभागीय हैं। तो आप दोनों विभागीय थे, आप अनाउंसर थे, वे कार्यक्रम अधिशासी थीं, तो आप बताएं कि आप दोनों की जुगलबंदी किस तरह से, किस किस प्रोग्राम में, किस किस कार्यक्रम में माइक्रोफोन में हुआ करती थी।
0: एक खास कार्यक्रम था चिट्ठी मिली
1: जी,
0: उसमें हम दोनों बैठे।
1: कौन से आकाशवाणी में?
0: अंबिकापुर में, बिलासपुर में
1: जी,
0: दोनों जगह।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग करते थे और चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था, लोग वाकई अपने रेडियो के कार्यक्रम तो ठीक है, अपनी समस्याएं, अपने परिवार की समस्याएं और आसपास की जानकारी लेना चाहते थे। ये बहुत अच्छा एक ऐसा कार्यक्रम था जो बिल्कुल दिल से लगा था
1: जी।
0: आपको बताएं कि एक वार्ता प्रसारित हुई थी नेत्र रोग विशेषज्ञ की, उन्होंने ये बताया था नेत्रदान कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने उसकी काफी पब्लिसिटी की, फोन नंबर वगैरह भी दिए थे
1: जी।
0: तो चिट्ठी मिली में एक पत्र आया कि मेरे, फोन भी आया और फिर पत्र भी आया कि मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, वो नेत्रदान करवाना चाहते हैं क्योंकि बचने की संभावना नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि 5-6 दिन में वो नहीं रहेंगे, तो नेत्रदान कैसे करें। हमने बताया, डॉक्टर की इंटरव्यू की लाइन सुनवा दी, उनको फायदा हो गया साहब, और वो लोग मतलब आंसू बहाते बहाते आए,
1: क्या बात,
0: कि आपकी वजह से हमें आंखें मिल गई।
1: वाह।
0: उसके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: और कोई खास बात जो आपको याद आ रही है?
0: चौरसिया जी का इंटरव्यू किया, हरिप्रसाद चौरसिया जी का, बिस्मिल्ला खान साहब से बात हुई
1: जी।
0: तो हमने कहा बिस्मिल्ला खान साहब से सुबह बात हुई, रेलवे स्टेशन पर जाके मिले थे क्योंकि वो रायगढ़ जा रहे थे समारोह में। हमने उनसे बोला कि आपका, आपके नाम से ही तो हमारा स्टेशन शुरू होता है, आपकी शहनाई से हमारा स्टेशन शुरू होता
1: क्या
0: है।
1: क्या बात।
0: उन्होंने बोला कौन सा स्टेशन शुरू नहीं होता।
1: जी।
0: बहुत रोचक आदमी थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ऐसी बिल्कुल। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
1: जी जी।
0: क्रिकेट खिलाड़ियों से बात हुई तो उन्होंने भी आकाशवाणी की ड्राइव की कि इसकी वजह से क्रिकेट पॉपुलर हुआ।
1: बिल्कुल।
0: बिलासपुर की जो लोक गायिका थी सूरज बाई खांडे, वो जब गाना गाती थी तो उनके घर वाले और ये सब बोलते थे कि इनका दिमाग ठीक नहीं है।
1: जी।
0: लेकिन जब उन्होंने गाना गाया और

0: में प्रसारित हुआ, यहाँ के कोई बड़े कलाकार थे वही ले गए थे रायपुर के, उनकी रिकॉर्डिंग की थी और जब रेडियो पे सुनाया तो उनके गांव में सारी भ्रांति और धारणाएं बदल गई उनके प्रति और उनको बहुत सम्मान मिला।
1: क्या बात,
0: तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेडियो की।
1: अरविंद जी, सेवानिवृत्ति को कितने बरस हो गए?
0: 14 वर्ष पूरे हो।
1: 14 सालों का ये जो फासला है, इस फासले में आपकी इतनी सारी बातें सुनकर तो यूं लगता है कि आप तो आकाशवाणी में आज भी हैं, सारी चीजें तरोताजा हैं और आपके मस्तिष्क में आज भी विद्यमान हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपका जो समय है वो अभी किस तरह से बीत रहा है?
0: मैं स्पोर्ट्स की मैगजीन निकालता था और फिर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करता था, ये सरकार के कुछ कार्यक्रम थे वो भी खींच के, लेकिन उसके बाद अब घूमने फिरने कम, खूब घूमे।
1: अच्छा।
0: हाँ, खूब घूमे। और आपको बताएं, हम लोग जापान गए थे
1: जी,
0: तो वहाँ पर भी लोग आकाशवाणी सुनते हैं
1: जी जी जी
0: जो इंडियंस हैं
1: है।
0: वो बराबर सुनते हैं आकाशवाणी
1: जी,
0: और एक क्लब वगैरह भी उन्होंने बनाया, भारत के लोगों का बहुत क्लब है। तो हम वहाँ गए थे तो पूछते थे, अच्छा आप आकाशवाणी में थे, कैसे प्रसारण होता है, क्या होता है? तो वो प्रथा जो है अभी भी लोगों के दिल में है कि आकाशवाणी को सुनो तो सब ठीक है, बिल्कुल सही है, पुख्ता है, सही शब्द है, सही भाषा है और सही संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं आकाशवाणी। तो विदेश में भी आकाशवाणी का लोग फायदा उठा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने बच्चों को बताते हैं सुनो आकाशवाणी, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी भारत के बारे में सारी चीजें वो पता चलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: अगर अरविंद माथुर आकाशवाणी में उद्घोषक नहीं होते तो क्या होते?
0: मैं पत्रकार था
1: जी,
0: आकाशवाणी में आने के पहले मैंने कई अखबारों में काम किया, दिल्ली के अखबारों में भी काम किया और देश के नामी जो पत्रकार हैं उनसे मेरा संपर्क रहा, उनके घर में रहता था, सीखता था और लिखता था।
1: तो अरविंद जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इस वक्त हमारे सामने आप बैठे हैं, बड़े ही तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं और आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो तो इस बात का एहसास ही नहीं करा रही कि आपको 14 बरस हो गए सेवानिवृत्त हुए, अभी भी बिल्कुल आप फिट लग रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री अरविंद माथुर से ली गई भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार।
1: देश की वाणी आकाशवाणी, ये कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से महावीर बरगाह की बातचीत।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पांडे सर। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ हैं। इनसे त्वचा संबंधी बीमारियों को बहुत करीब से जानेंगे और उसके छुटकारा पाने के उपायों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। वैसे तो पढ़ाई के दौरान जो है मेरे शोध एक्नी और सोरियासिस के विषय पे मेरे शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए आकाशवाणी बिलासपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से आज हम एक्नी विषय पे प्रकाश डालने जा रहे हैं।
2: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका शोध का विषय ही रहा है एक्ने, तो ये है क्या?
3: हम सभी के स्किन में तेल वाली ग्रंथियां होती हैं।
2: जी,
3: ये तेल वाली ग्रंथियां कुछ हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती हैं। जब हार्मोन उनसे आके चिपकते हैं

0: तो वो ग्रंथियां बड़ी हो जाती हैं और अधिक स्राव चालू कर देती हैं।
1: अच्छा,
0: ये हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन होते हैं जो अमूमन 14 साल के बाद हमारे बॉडी में बढ़ना चालू होते हैं और निकलने वाले रास्ते में ही रुक जाता है, चोक हो जाता है, जिसके कारण ये ग्रंथियां फूल जाती हैं। इन्हीं फूली हुई तेल वाली ग्रंथियों को हम पिंपल कहते हैं। ये अमूमन ठोस होते हैं और यदि इसमें प्रोपियोनियम बैक्टीरियम एक्नी, ये पिंपल को संक्रमित करने वाले कीटाणु का नाम है, यदि इसमें कीटाणु अंदर चला जाता है तो इन ग्रंथियों के श्राव को वो खाना चालू कर देता है और खाना मिलेगा तो वो बढ़ेगा।
1: जी, बहुत स्पष्ट आपने बता दिया। और साथ ही साथ बताएं कि ये चेहरे पर हो ही ना, ऐसा क्या करें?
0: मैंने अपनी 10 से 15 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है, क्लियरली देखा है कि यदि माँ या पिता में किसी भी एक व्यक्ति को यदि एक्ने ज्यादा रहा हो तो उनके बच्चों को भी ये ज्यादा रहता है। जिस व्यक्ति में इन ग्रंथियों की सक्रियता जितना ज्यादा होगी उसको उतना ही ज्यादा उसकी देखभाल करने की जरूरत होगी, उतना एक्टिव हो के ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होगी और ट्रीटमेंट भी उतना ही लंबा चलेगा।
1: तो क्या इसके प्रकार भी होते हैं?
0: जी हाँ, एक्ने के अमूमन 4 प्रकार होते हैं।
1: अच्छा।
0: जो है कॉमिडोनल एक्नी कहा जाता है, सिस्टिक एक्नी, नोडुलर एक्नी और एक एक्नी कॉग्नो ब्लाटा कहा जाता है जिसमें बुखार भी आ जाता है। तो ये मोटे मोटे 4 प्रकार के होते हैं, सूखे गीले गठान वाले और बुखार लेकर आने वाले, 4 तरह के दाने।
1: और ये भी बताएं कि हम अक्सर जो भी इसके शिकार होते हैं तो हाथ उस पर जाता ही है, उंगलियां फेरते हैं या धीरे से उसको फोड़ देते हैं, तो ये नुकसानदायक है?
0: बिल्कुल नुकसानदायक है। यदि आप पिंपल को फोड़ते हैं तो वो पिंपल जो निशान नहीं बनाने वाला रहता वो निशान बनाकर ही ठीक होने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं आप।
1: आपने जैसा कि बताया कि उसको फोड़ना नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: नहीं।
1: फिर उपचार किस तरह से करना है?
0: उपचार आपको नजदीकी चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलना है। पिंपल आपका सूखा हुआ होगा तो वो अमूमन एक लगाने की और एक धोने की, एक फेस वॉश और एक क्रीम दे देंगे
1: जी।
0: और यदि गीला हुआ तो इसके साथ वो एक एंटीबायोटिक भी देंगे। दवाई आपकी कितनी ज्यादा या कितनी लंबी चलेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। जैसे बच्चों को अमूमन हम कम दवा लिखते हैं, यदि फीमेल हैं और उनकी उम्र 30 के आसपास है और वो ये कह रही हैं कि सर जब भी मुझे महीना आता है तो मेरा पिंपल बढ़ जाता है, तो वो हार्मोनल एक्नी हो जाता है, वो ज्यादा समय मांगता है, ज्यादा दवाइयां मांगता है, ये आपको जानना जरूरी है। आप एक दो बार जाके आपको लगेगा कि तो ठीक ही नहीं हो रहा है और फिर आप घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप उल्टे अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने लगेंगे।
1: साफ सफाई का निश्चित रूप से इसमें भी महत्व है और आमतौर पर हम साबुन का ही उपयोग करते हैं चेहरों की सफाई के लिए या फेस वॉश यूज करते हैं, तो ये हम कैसे तय करें कि हमारे त्वचा के लिए या हमारे चेहरे के लिए कौन सा साबुन उपयुक्त है, क्योंकि लुभावने विज्ञापनों की भरमार रहती है।
0: आपकी स्किन ऑयली है तो आपको आपकी स्किन को सूखा करने वाला फेस वॉश देना ज्यादा उचित होगा जिसमें सैलिसैलिक एसिड हो, और यदि किसी की चमड़ी ऑलरेडी सूखी हो ऐसा फेस वॉश देना होगा जो चमड़ी को धोने के बाद नमी दे, जिसमें एलोवेरा ज्यादा हो, जिसमें मॉइस्चराइज करने वाला केमिकल मिला हो
1: जी।
0: मोटे तौर पे जो लोग गांव में रहते हैं जहाँ पे फेस वॉश भी मिलता भी नहीं है, लोग रैंडमली यूज इस्तेमाल करने लगते हैं, यदि आप वहां पे पूछें तो कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसा साबुन जिसमें ग्लिसरीन मिल्क की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा साबुन हमें, और ये बहुत कॉमनली जो है बाजार में मिलते हैं, आप उनके रैपर के पीछे पढ़ के देखेंगे तो वो साबुन अच्छे रहते हैं।
1: जैसा कि आपने बताया कि मिल्क बेस्ड और ग्लिसरीन बेस्ड, और इस तरह के उबटन गांव में अक्सर तैयार करते हैं चेहरों पर लगाने के लिए, हल्दी मिलाकर, तेल मिलाकर, नारियल तेल, कपूर, ये सब मिलाकर, तो क्या वो उबटन सही होते हैं? दूध मलाई भी लगाते हैं कुछ लोग चेहरे पर।
0: देखिए, जो हमारे दादी और नानी के जो नुस्खे हैं वो नुस्खों में गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ
1: जी,
0: लेकिन हाँ, यू कैन नॉट अप्लाई वन फॉर्मूला एट ऑल प्लेसेस
1: जी,
0: तो आप एक रूल सभी लोगों पे नहीं लगा
1: नहीं
0: सकते,
1: लगा सकते जी हाँ।
0: तो होता क्या है कि जब हम घरेलू नुस्खों का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, इसलिए वो नुस्खे कई जगह नुकसान दे देते हैं।
1: सबकी त्वचा की तासीर अलग होती है,
0: बिल्कुल
1: जी हाँ। जैसा कि आप बता रहे थे किसी की ऑयली है या ड्राई है, तो कोई एक उपटन बना लिया उसे सभी उपयोग करें ऐसा जरूरी नहीं।
0: मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद यकीन नहीं होगा, दो फैक्ट बताता हूँ कि एकदम गोरे आदमी में और एकदम काले आदमी में रंग बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या समान होती है।
1: अच्छा,
0: जो काला रंग है, जो रंग बनाता है, उसकी संख्या एकदम गोरे लोगों में और एकदम काले लोगों में, दोनों में समान होती है। ये सिर्फ सक्रियता का अंतर होता है कि उसमें ज्यादा सक्रिय है इसलिए वो काला हो गया, इसमें सक्रियता कम इसलिए वो गोरा हो गया। वैसे ही धूप को हम कितना नजरअंदाज करते हैं।

0: हैं चमड़ी के प्रोस्पेक्टिव में, आप नोटिस कीजिएगा प्रैक्टिकली, एक गोरा व्यक्ति के साथ एक सांवला व्यक्ति 5 मिनट धूप में खड़ा हो जाए, गोरा व्यक्ति को 2 से 4 घंटे खड़े होने के बाद भी उतनी टैनिंग नहीं होगी जितने सांवले व्यक्ति को 5 से 10 मिनट में हो जाएगी।
1: जी।
0: तो धूप का, हम सेम खाना खा रहे हैं, सेम हम, हमारे लिए सारी चीजें सेम है, सिर्फ त्वचा के रंग में अंतर से कितना फर्क पड़ गया। तो यही फर्क जब आप बड़े होते हो तो एक्नी के प्रोस्पेक्टिव में भी पड़ता है, और इतना अंतर आ गया, इसीलिए हम एक गोरे व्यक्ति का, एक सांवले व्यक्ति का, या एक जिसके में सक्रियता ज्यादा है तेल वाली ग्रंथियों की, उनके प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, और इसीलिए एक फॉर्मूला आप सब पे अप्लाई नहीं कर पाओगे।
1: हाँ। जानना चाहेंगे कि फिर सावधानी क्या क्या अपनाएं हम ताकि इस तरह ना हो चेहरे पर।
0: अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुभवों पे कुछ बात रखना चाहूंगा कि यदि पेरेंट्स में, माता या पिता में से किसी भी एक व्यक्ति को अपने युवावस्था के दौरान पिंपल ज्यादा रहे हों, तो अपने बच्चों के पिंपल दिखने पे ही डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें, क्योंकि उनके में भी, उनके बच्चों में भी तेल ग्रंथियों की सक्रियता अधिक ही होगी। तो आप जितना जल्दी चले जाएंगे आपका बच्चा उतना कम सफर करेगा और उसके चेहरे पे उतने कम निशान पड़ेंगे।
1: इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, और हमारे श्रोताओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके माध्यम से अपने निजी कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि मैंने ORS सीखा है। ORS शायद आप सभी लोग जानते होंगे।
1: जी हाँ।
0: एक ORS होता है जो शरीर के डिहाइड्रेशन के समय यूज होता है।
1: हम उसी को जानते हैं घोल के पीने के लिए।
0: आपको शायद पता नहीं होगा या जानकर बड़ी खुशी महसूस होगी कि उसकी खोज इंडिया में हुई थी।
1: अच्छा।
0: और उसको सदी का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट खोज माना गया है, और उसका कारण है कि उसने लाखों लोगों की जान बचाई। जैसे शरीर को डिहाइड्रेशन में ORS की जरूरत होती है, वैसे दिमाग को भी ORS की जरूरत होती है। दिमाग का ORS क्या होता है? आपको ऑर्गेनाइज रहना है, रेगुलर रहना है, और सिस्टमेटिक रहना है। इस चीज को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब आप ऑर्गेनाइज होते हो तो पहले आप अपने सामान को ऑर्गेनाइज करते हो, पहले आप अपनी बिस्तर को ऑर्गेनाइज करते हो सवेरे उठते हो, फिर आप अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आप देखते हो कि धीरे धीरे जो आप ऑर्गेनाइज, आपके सामान से उठ के आपके व्यवहार में और काम में पहुंच जाता है।
1: हाँ।
0: तो मैं कहता हूं कि अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज होना जरूर सिखाइए। शुरू में वो अपना बिस्तर ऑर्गेनाइज करेगा, बाद में अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करेगा, बाद में वो अपने व्यवहार को ऑर्गेनाइज करेगा, और जब वो कोई भी काम करेगा तो उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा। तो ऑर्गेनाइज रहिए, रेगुलर रहिए, और सेल्फ केयर कीजिए।
1: वाह क्या बात है। निश्चित ही ये मानसिक ORS न केवल शारीरिक रूप से हमको स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा, और देश समाज के लिए हम एक सुदृढ़ नागरिक बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां बांटने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सेहत की बात डॉक्टर के साथ, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से महावीर बरगाह की बातचीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:41 हुए हैं। लीजिए पेश है सदाबहार नगमे।

0: इस फिल्म का गाना भी आपने सुना आशा भोसले और विशाल गोस्वामी की आवाजों में। गीत लिखा था माया गोविंद ने, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भैया
1: इसकी चाल तो देखो,
0: अरे रंग लगाया
1: इसके बाल तो देखो,
0: अ

0: किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं,
1: अरे ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं,
1: अरे ना जी ना जी ना जी।

0: अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म का गाना भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी खयाम ने। और इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: से कर ले तू
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की

0: सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड

0: ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों के पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा।

दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन

0: से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस एट फालता असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
3: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shrondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning.

कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं सुख सागर सिंह खुसरो का गाया प्रेम गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है जहांगीर मेहंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप, दगोरी उड़नताल से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला पल्लवी और समीर गायकवाड़। ग्राम रसेड़ा कलतरा से है मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। गौतम नगर जिला नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा दिव्यांश और लवी श्रीवास्तव।

0: सुख सागर से ही खुसरो का गाया प्रेम गीत आपने सुना।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब आइए सुनते हैं जवाहरलाल बघेर और साथियों का गाया गीत, पसंद आप सभी श्रोताओं की है। भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गौहाड़कर, श्रीमती सरिता गौहाड़कर, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता गौहाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, कुमारी, ध्वनि गौहाड़कर। यहीं से लाडला टुक टुक। भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा और रचनाकार मुंधड़ा। रावण भाटा भाटापारा से है बबला, रिखी राम और श्रीमती कमलेश्वरी यादव। रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल और अनीता श्रीवास। गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी से हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र, तुसारनी मसिया। यहीं से रिजवान खान, आयसा, सबीहा, अनस और रिहान।

जवाहरलाल बघेल और साथियों का गाया गीत आपने सुना। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

0: जाए निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बीबी अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ से रोशन कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन, शांतिनगर भाटापारा से मिलउदास, कुलदीप, संतोष, संदीप दास, अजीत, कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्की, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार, हव्या और टानिया रजक, पुरानी भिलाई पदुम नगर से हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दकी, बेगम हमीदुन निस्की, जिसान अहमद सिद्दकी, शाहनवाज अहमद सिद्दकी और इनके परिवार के सभी लोग।

ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति बाजार पारा बेमेत्रा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की और मुरली मनोहर पटेल बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल सेन तारा कौशल खुशबू सेन यवतमाल विदर्भ से हैं संतोष खटसे और विनोद खटसे आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन का गाया गीत।

ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, बेमेतरा से सुरेश कुमार, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, ब्रिजकांत सारथी।

हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और खुशी रौनक सेन, श्री श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं, मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु और अंकित देवांगन, दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत रॉय, अमरदीप, अनिल और इनके परिवार के सभी लोग, बेमेत्रा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या श्रीमती सुषमा सारथी, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोआराम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम और जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआ भाटापारा से हैं सियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बीबी अनिशा, रायपुर से हैं नीलू मेघ। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं बैतल राम साहू, आशा साहू और साथियों का गाया गीत।

बैतलराम साहू और आशा साहू का गाया गीत आपने सुना। श्रोताओं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत तो हमें लिख भेजिए। पता है माटी के स्वर द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर छत्तीसगढ़, नूतन कॉलोनी, पिन नंबर 495006। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर केंद्रित छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ हम उपस्थित हैं। तमाशा फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

दोस्तों, आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वर्ष की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, यानी कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। ये इस वर्ष की थीम है। यूनेस्को ने 1991 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। और ये दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाई है। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसके अलावा आज अभिनेत्री नरगिस को हम याद कर रहे हैं। नरगिस को बहुत प्रतिभावान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्मों में उनके अभिनय में हमें विविधता दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है। दिल को छू लेने वाला उनका अभिनय रहा है। जो उनकी जो फिल्में हैं उनमें हमने इस चीज़ को महसूस किया है। 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान

0: आने वाली अभिनेत्रियों में से वो थी और 1948 से 1957 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वे दिखाई देती हैं। 1950 के दशक में नरगिस की साड़ियां एक बहुत प्रमुख स्टाइल स्टेटमेंट थी। वैसे तो उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, पर मदर इंडिया फिल्म में उनका जो अभिनय है वो काफी सराहा गया। महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का जो किरदार उन्होंने निभाया है, तो वो किरदार निभाकर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। उनके अभिनय की बहुत तारीफ की गई इस फिल्म में। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारा विनम्र नमन। गीत हम आगे और सुनेंगे, उससे पहले संदेश सुनते हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अगला गाना सुनते हैं सुई धागा। इस फिल्म का गाना पेपोन और रोनकिनी गुप्ता की आवाजों में, वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनु मलिक का।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल और शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है जीनियस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में, कुमार के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल, गणेश और साथियों की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश का लिखा हुआ गाना, शैल प्रीतेश और नितिन शंकर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

जिसका असली नाम था रशीद फातिमा, पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहां तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

0: आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।
1: ये

राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

0: नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।
1: खटपुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं।

उन्होंने मेकअप मैन पंढरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

और पेश आज के मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। महासमुंद जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपए की रसोई गैस के गबन का मामला सामने आया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। अब समाचार विस्तार से। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। महासमुंद जिले में एलपीजी गैस के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षित रखरखाव के लिए सुपुर्दनामे में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल से लगभग 90 मीट्रिक टन से अधिक गैस के गबन का खुलासा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, निदेशक और प्लांट प्रबंधक ने कूट रचना कर गैस खाली की है। बताया गया है कि बीते 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 6 कैप्सूल से औसतन 17 मीट्रिक टन गैस निकाली गई। इस तरह कुल लगभग 100 मीट्रिक टन गैस अवैध रूप से खाली किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार रायपुर की 8 एजेंसियों ने चोरी के मार को जल्दी खत्म करने में मदद की है। महासमुंद जिले की सिंगोड़ा थाना पुलिस ने बीते दिसंबर महीने में एलपीजी गैस के 6 कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया था। गैस से भरे इन ट्रकों के लिए थाने में सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें सुरक्षित रखने के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के सुपुर्द किया गया था। मामले की जांच जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। इससे पहले श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत इन दिनों प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। बीते 1 मई से शुरू हुआ यह अभियान 30 मई तक चलेगा। इस कार्य के लिए राज्यभर में 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्नों की जानकारी दर्ज कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और जनसुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित सीबीएस को दूरसंचार विकास केंद्र सी डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

0: प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। सीबीएस का अखिल भारतीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बाल भविष्य सुरक्षा योजना के संबंध में समाचार यह है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नवमी में प्रवेश के लिए मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन आगामी 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा के लिए विद्यार्थी 10 मई तक अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। महासमुंद जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपए की रसोई गैस के गबन का मामला सामने आया है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: होती है और हंसी से हमारे दिमाग को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ बच्चों, प्रस्तुति लिंटा मनोज की है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। आशा करते हैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप सभी अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप सभी की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में हर पल का आनंद आप हंसते मुस्कुराते हुए उठाइए बच्चों, क्योंकि आज का दिन हमें यही संदेश भी देता है कि हमेशा हंसते रहें, खुश रहना सीखें और दूसरों को भी खुश रखें। हर साल बच्चों मई महीने के पहले रविवार को हम विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि लोग अपनी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के समय बच्चों आप पढ़ाई, काम और मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार मुस्कुराना भूल जाते हैं, है ना? लेकिन आपको मालूम है, एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिन को खूबसूरत बना सकती है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो ना केवल हमारा मन खुश होता है लेकिन हमारे आसपास का माहौल भी खुशियों से भर जाता है। वैसे बच्चों आपको सबसे ज्यादा हंसी कब आती है? शायद जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या किसी मजेदार बात पर, या फिर खेलते समय, है ना? और इसी प्रकार आपने महसूस किया होगा कि जब आप उदास होते हैं और कोई आपको हंसा देता है तब आपका मन हल्का और खुश हो जाता है। एक समय की बात है बच्चों, चिंटू नाम का बच्चा हमेशा उदास रहता था। फिर उसके दोस्त राजू ने रोज एक मजेदार कहानी या किस्सा उसे सुनानी शुरू की। इस तरह से धीरे धीरे चिंटू मुस्कुराने लगा, फिर जोर से हंसने भी लगा और कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। हमें इससे सीख मिलती है बच्चों कि हंसी छोटी जरूर होती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। ये हमें अंदर से ही मजबूत नहीं बनाती बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्यारा बनाती है। इस तरह से हंसी सिर्फ मजाक नहीं है लेकिन ये हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तब हमारा मन खुश रहता है। हंसी से हमारा तनाव या टेंशन भी कम होता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमें खुश महसूस कराते हैं, जैसे हैप्पी हार्मोन, जो कि हमारे दुख और टेंशन को कम कर देते हैं। बच्चों जब आप परेशान होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप हंसते हैं तो जो आपके मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, शरीर से आप हल्का महसूस करते हैं और टेंशन अपने आप कम होने लगता है। और वहीं जब आप दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर हंसते हैं तब आपको लगता है आप अकेले नहीं हैं, आपकी चिंता भी कम हो जाती है। इस तरह से बच्चों हंसी वो जादुई दवा है जो कि हमारे मन का टेंशन मिनटों में दूर कर देती है। यही नहीं, हंसी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है बच्चों। जब आप हंसते हैं तब आपका मन खुश हो जाता है, आप अंदर से अच्छा और सकारात्मक महसूस करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे आप ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। इनके अलावा हंसी हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। आपने सुना भी होगा जो लोग ज्यादा हंसते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। जब आप

जोर से हंसते हैं ना तो गहरी सांस लेते हैं, जिससे फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, जो कि एक तरह से छोटी एक्सरसाइज ही होती है। और हंसी से हमारे दिमाग को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं। इस तरह से बच्चों, हंसी एक ऐसी टॉनिक है जो हमें खुश भी रखती है और स्वस्थ भी बनाती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हर दिन कुछ अच्छा सोचें और मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करें। दोस्तों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, अपने मनपसंद काम करें, जैसे चित्र बनाना, नृत्य करना या गाना गाना। मोबाइल और टीवी का उपयोग आप कम करें, इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलें। और हाँ, एक जरूरी बात बच्चों, हमेशा दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। इस तरह से बच्चों, आज की चर्चा से आपने और हमने सीखा कि रोज हमें हंसना चाहिए, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए। याद रखिए बच्चों, जहाँ हंसी होती है वहाँ खुशी अपने आप आ जाती है। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए आप सभी, हमारी यही कामना है। चलिए, इस छोटी सी बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत।

0: चलिए आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। बच्चों, 1 मई को हमने आकाशवाणी बिलासपुर केंद्र का 35वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें रेडियो से जुड़ी कई यादगार पलों, किस्सों के बारे में अपनी बातों को साझा करते हुए पूरे आकाशवाणी परिवार ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया बच्चों। और इसी संदर्भ में हमारे कुछ नन्हे दोस्तों ने स्थापना दिवस की खुशी में अपना संदेश हम तक फोन के माध्यम से पहुंचाया, तो आइए इनसे जुड़ते हुए हम इनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मोनिका साहू है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माँ गैथी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी है। हम लोग आओ बच्चों कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी बिलासपुर आए थे। आओ बच्चों कार्यक्रम में हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी, हम लोगों को अब बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के सर मैम बहुत अच्छे हैं, जो हमें कार्यक्रम के बारे में कैसे बोलना है बहुत अच्छे से सिखाए। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत व अच्छा है। मैं आप लोगों को गर्मी के बारे में बताना चाहूंगी। प्रिय साथियों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी से होने वाले नुकसान और उससे बचने के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास, जो कि नौतप्पा के नाम से जाना जाता है, वर्ष का सबसे गर्म समय माना जाता है। इस दौरान तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तेज धूप और लू चलती, जिससे जनजीवन प्रभावित हो जाता है। अब मैं आप लोगों को गर्मी से होने वाले नुकसान को बताना चाहूंगी। सबसे पहले, इस प्रचंड गर्मी का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तेज धूप और लू के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा अधिक गर्मी के कारण चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी और कभी कभी हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। गर्मी का असर हमारे पर्यावरण और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। पानी की कमी, सूखा, फसलों का खराब होना और बिजली की खपत जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। अब मैं आपको गर्मी से बचने के उपाय बताना चाहूंगी। अब बात करते हैं कि हम इस भीषण गर्मी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले, हम अधिक से अधिक पानी अवश्य पीना चाहिए। धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए, विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर पर कपड़ा या टोपी पहने और छाता का उपयोग करें। हल्के और सूती कपड़े पहने, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है। ताजे फल जैसे तरबूज, खीरा और नींबू पानी का सेवन करें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। ज्येष्ठ मास की गर्मी भले ही बहुत कठिन हो, लेकिन यदि हम सावधानी बरतें और सही उपाय अपनाएं, तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर द्वारा जितने भी कार्यक्रम दी जाती है बहुत अच्छी लगती है। आओ बच्चों, माटी के स्वर, चिट्ठी मिले, किसानवाड़ी। हमारे घर में सुबह से ही रेडियो चालू रहती है, जिसमें हम लोग सुबह आराधना, देशभक्ति आज सुबह सुनकर हमारी दिन की शुरुआत होती है। आप सभी को आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।

कक्षा छठवी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माँ गायत्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनई है। हम लोग आओ बच्चों कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी बिलासपुर आए थे। आओ बच्चों कार्यक्रम में हम लोगों ने

0: आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: दीप्ति साहू है, मैं कक्षा सातवीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माँ गायत्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनाई है। हम लोगों आओ बच्चों कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी बिलासपुर आए थे। आओ बच्चों कार्यक्रम में हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के सर मैम बहुत अच्छे हैं, जो हमें कार्यक्रम के बारे में कैसे बोलना है बहुत अच्छे से सिखाए। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांति व अच्छा है। आज मेरे गांव के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे गांव कटनाई बहुत ही सुंदर और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। हमारे गांव की सबसे खास बात है जहां स्थान सिद्ध देव पहरिया पाद जी जो पहरिया पर विराजमान है। यह स्थान हमारे लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। हर साल नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां भव्य मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहां पूजा अर्चना करते हैं। यहां की एक विशेष परंपरा है मनोकामना ज्योत। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्योत जलाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगी गई हर सच्ची मनोकामना जरूर पूरी होती है। मेला हमारे गांव की पहचान है। इस दौरान गांव में खुशियों का माहौल होता है। बच्चे झूले झूलाते हैं, लोग प्रसाद लेते हैं और सभी मिलकर इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। मुझे अपने गांव कटनाई पर बहुत गर्व है। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि हमारे संस्कृति आस्था और परंपराओं का प्रतीक है।
2: दोस्तों नमस्कार, आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम हर्षिता श्रीवास है। मैं विकास खंड अकलतरा के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मुकेश श्रीवास है और मेरे पापा फोटोग्राफी का काम करते हैं। और मेरी मम्मा का नाम पिंकी श्रीवास है। मेरी मम्मा हाउस वाइफ है और वो सिलाई का काम करती है। और मेरी स्कूल का नाम अघोर विद्यापीठ पौड़ी दल्हा है। मैं कक्षा दूसरी की छात्रा हूँ। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर आने का भाग्य प्राप्त हुआ और मुझे यहाँ आकर

0: घर में सभी रेडियो सुनते हैं और मेरे दादू का फेवरेट कार्यक्रम का नाम किसान वाड़ी है और मेरे मम्मा का फेवरेट कार्यक्रम महिला सभा है। मैं आप सभी को एक और बात बताती हूँ, और मेरे नाना भी रेडियो सुनते हैं और उनका नाम राम गुलाम सेन है और वो रेडियो में बहुत पत्र लिखते हैं। और मेरे नानू के फेवरेट कार्यक्रम का नाम माटी के स्वर और गुंजेश्वर गांव के। अरे यार, ये बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, मेरे फेवरेट कार्यक्रम का नाम आओ बच्चों है। अभी तो स्कूल की छुट्टी भी चल रही है, मैं तो दिन भर रेडियो सुनती हूँ। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप भी रेडियो सुनिए और धूप में ना घूमे और मटके का खूब पानी पिए, स्वस्थ रहे मस्त रहे। आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर आके मुझे बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अवसर मिला तो मैं फिर से आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर आऊंगी। तब तक आप सभी को हर्षिता श्रीवास की तरफ से सादर धन्यवाद।
1: मेरा नाम सनेसा किरण है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम LBS ग्लोबल पब्लिक स्कूल बलौदा है। पिछले वर्ष हम आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर आओ बच्चों कार्यक्रम में गए थे। वहाँ जाकर हमें पता चला कि आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख रेडियो स्टेशनों में से एक है, जो स्थानीय समाचार, शिक्षा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और गीतों का प्रसारण करता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक है। यहाँ के सभी सर और मैडम बहुत ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सर और मैडम द्वारा प्रसारण किस प्रकार होता है बहुत ही बारीकी से समझाया गया, जिससे हमें जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। जब हम अपनी कविता, कहानी और विचारों के स्टेजियों में बोले और जब यह रेडियो में प्रसारण हुआ तो हमें अपनी आवाज सुनकर बहुत ही खुशी महसूस हुआ। मैं आप लोग को अपनी माता पिता के गवर्नमेंट टीचर होने के बारे में बताना चाहती हूँ। माता पिता का शिक्षक होने बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रेरणा है। वे न केवल अपनी शिक्षा देने के बल्कि अनुशासन और जीवन के सही मूल्य भी सिखाते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है जो हमारे विकास में मदद करती है। धन्यवाद।
0: नमस्ते, मेरा नाम है मायरा किरण, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है LBS ग्लोबल पब्लिक स्कूल बलौदा। मैं पिछले साल आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर आओ बच्चों में कार्यक्रम में गई थी। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा था, वहां बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाया था। हमें अपने आसपास एवं अपने घर को साफ रखना चाहिए। आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर प्रकृति पर्यावरण से घेरा हुआ है, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, पानी की बचत करना चाहिए, जीवों की सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।
2: जय हिंद दोस्तों, आधारशिला विद्या मंदिर न्यू सैनिक स्कूल से मैं कैडेट कबीर वर्मा आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम में पहली बार भाग लिया एवं रेडियो प्रसारण व रिकॉर्डिंग का अनुभव प्राप्त किया। यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत रोमांचक, नया और शिक्षाप्रद रहा। जब मैं रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचा तो वहां का शांत, अनुशासित और तकनीकी वातावरण मुझे बहुत अलग और विशेष लगा। रिकॉर्डिंग रूम में जाते ही मैंने बड़े बड़े माइक्रोफोन, हेडफोन और साउंड कंट्रोल सिस्टम देखे, जो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। शुरुआत में मुझे थोड़ा संकोच और घबराहट महसूस हुई, लेकिन वहाँ के सहयोगी स्टाफ के मार्गदर्शन और शिक्षकों के सहयोग से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से आओ बच्चों कार्यक्रम में जरूर भाग लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।

0: Jai Hind everyone, from Adharshila Vidya Mandir New Scenic School, I, Radharan Swami, will going to share my experience on Akashvani. My experience was amazing. As I have visited that place once before, I know the place very well, like the room where we recorded our voice, the entrance and the controlling room. My seniors and friends were with me, so I was enjoying more. Till the time I listened my voice, I was very happy. That was an incredible experience. I love to listen Aao Bachcho and I listen it regularly. If I get a chance to go once again, I will love to go. Thank you. Jai.
1: हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार साहू इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस की आप सभी सुनने वाले साथियों को बधाई देना चाहता हूं। कार्यक्रम आओ बच्चों मुझे बेहद पसंद है दोस्तों। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम को सुनता हूं। यह कार्यक्रम मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। रेडियो स्टेशन जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ लिंटा दीदी और अनेक लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। माइक के सामने बोलने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। वहाँ की शांति और अनुशासन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वहाँ से आने के बाद मेरे परिवार, मेरे सहपाठी और मेरे शिक्षकों ने भी मेरी बहुत तारीफ की। धन्यवाद आकाशवाणी बिलासपुर कि आपने मुझे यह अवसर दिया।
2: हेलो साथियों, मेरा नाम विवेक कुमार सोनी है और मैं हसदेव पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूँ। आओ बच्चों कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें सामान्य ज्ञान की जानकारी से लेकर शिक्षा प्रद कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। मैं कुछ महीनों पहले आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के रेडियो स्टेशन गया था। वहाँ का माहौल शांत और बहुत ही फ्रेंडली था। माइक में बोलना वहाँ मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस पर सारे कर्मचारियों को मेरी बधाई।
3: नमस्ते, मेरा नाम युग बाल्मीकि है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर में पढ़ता हूँ। हाल ही में मुझे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के बच्चों के विशेष कार्यक्रम आओ बच्चों में अपने दो प्रस्तुतिकरण देने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। रेडियो के माध्यम से अपनी बात रखना मेरे लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। वहाँ मुझे दीदी से मिलने और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनके सहज स्वभाव के कारण मैं स्टूडियो के माइक के सामने बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ बोल पाया। आओ बच्चों जैसे मंच हमें अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतर मौका देते हैं। मैं आकाशवाणी बिलासपुर की पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। धन्यवाद।
4: नमस्कार, मेरा नाम सविता रौतिया है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर में पढ़ती हूँ। मुझे आकाशवाणी केंद्र में आकर बहुत ही अच्छा लगा। पहले मुझे डर लग रहा था पर वहाँ जाकर हम मैम से मिले। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया और वहाँ की सारी जानकारी दी। मैंने आओ बच्चों कार्यक्रम में गीत की प्रस्तुति दी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने वहाँ रेडियो से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की। आकाशवाणी केंद्र जाकर मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमने वहाँ जाकर कुछ नया सीखा जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और नई नई चीजें करने की प्रेरणा मिली। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आपके द्वारा ऐसे अवसर हमें मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
5: नमस्कार, मेरा नाम शीतल कुष्टी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर बिलासपुर में पढ़ती हूँ। मुझे पहले डर लग रहा था पर आकाशवाणी केंद्र में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ सुप्रिया मैम से हम मिले। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से वहाँ की जानकारी दी और वहाँ के बारे में समझाया। मैंने आओ बच्चों कार्यक्रम में गीत की प्रस्तुति दी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नए नए चीज देखने को मिली जिससे मैंने कुछ नया सीखा। मुझे दोनों मैम बहुत ही अच्छी लगी। मैं हमेशा यही चाहूँ

0: में आपके द्वारा हमें ऐसे अवसर मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बच्चों, आशा करते हैं कि हमारे इन बच्चों की प्रस्तुति और आज का कार्यक्रम आप सभी ने जरूर पसंद किया होगा। आप सभी हमें पत्रों के द्वारा बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और अब धीरे धीरे समय भी कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: आओ बच्चों, कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रस्तुति लिंटा मनोज की थी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नए तराने।

0: आशिकी 2 फिल्म का गाना आपने सुना तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, धुन तैयार की थी जीत गांगुली ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: संजय मासूम की रचना आपने सुनी प्रीतम के संगीत निर्देशन में, गायक कलाकार राहत फतेह अली खां और साथी, फिल्म थी जन्नत टू। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, प्रतिदिन की तरह अब आप सुनेंगे अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। आकाशवाणी बिलासपुर के दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर में मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शहर के 19 परीक्षा केंद्रों में नीट की प्रतियोगी परीक्षा बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सभी को शुभकामनाएं। साथ ही सभी प्रतियोगियों से अनुरोध है समय रहते परीक्षा केंद्रों में पहुंचना सुनिश्चित करें और परीक्षा केंद्र के बाहर अपने वाहन सुव्यवस्थित पार्किंग में ही रखें, ना कि सड़कों के किनारे अस्त व्यस्त। तथा परीक्षा के समापन पर एकाएक सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र से बाहर आने पर सड़कों में यातायात की व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है सड़क में एक के पीछे एक धीरे धीरे आगे बढ़े, ओवरटेक बिल्कुल न करें।

0: ऐसा करने से न तो आप आगे बढ़ सकेंगे और न ही सड़क में चल रहे अन्य लोग। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कतार में आगे चले। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहर की सभी सड़कों में दोनों किनारों पर पीली पट्टी बनी होती है। जब भी आप शहर में किसी भी वाहन से आए, तब अपना वाहन हमेशा इस पीली पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। यदि आपका वाहन पीली पट्टी के अंदर खड़ा है, तो इससे सड़क संकीर्ण होती है, यातायात बाधित होता है, लोग परेशान भी होते हैं। और ऐसी स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके वाहन की फोटो भी हमारा कैमरा खींचकर चालान के साथ आपके पास भेज देगा, जिसके लिए आपको जुर्माना भी पटाना होगा। अतः काम ऐसा करें जिसका परिणाम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना।

कलंक फिल्म का गाना आपने सुना श्रेया घोषाल और साथियों के स्वर में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की थी प्रीतम ने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

वांटेड फिल्म का गाना आपने सुना वाजिद और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने और धुन तैयार की थी साजिद वाजिद ने। आइए आप सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।

0: लगेगा तुम। चलो।
1: रफ्तार का लिखा गाया और संगीतबद्ध किया गीत आप ही आपने सुना फुगली फिल्म से, और इसी के साथ नए फिल्म गीतों का कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं, पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है, इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं, उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा, तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर की देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है, इसीलिए तो 1000 रूप

खूब गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को दो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझमें बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उससे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूं, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी, जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गाये और तीन बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मछली बहू से एकदम एकदम मां बन जाती।

गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार, उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता, फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है, अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, तभी से दरार शुरू हो गई।

जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना

कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई

ने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सकें। वे पतिव्रता थीं। पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहां उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं

जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसंवेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी, इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों

बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी जी जी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गईं, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसके यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो, मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था, सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने

0: तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। दो एक दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, बोलना।
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सस्मणि हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आए। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, हाँ, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहां आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहां गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहां आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति

0: नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, हाँ, जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु।
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जी जी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन

की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी, कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार, कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मझली बहू तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा, तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था, बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूं अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप जिनकी आंखों को भाया है वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं, तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीरा बाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीरा बाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े, लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले प्रदेशव्यापी दौरे पर रवाना हुए। कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा पर कल हुए बारूदी विस्फोट में शहीद जवानों को आज नारायणपुर में दी गई श्रद्धांजलि। और बस्तर में बीती रात मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत आज से प्रदेशव्यापी दौरे शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से औचक निरीक्षण के लिए रवाना हुए। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री आम नागरिकों से रूबरू होकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत कुमार बंसल भी रवाना हुए हैं। गौरतलब है कि 1 मई से शुरू हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन की आपूर्ति 100% सुनिश्चित की जाए। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें, क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर कल हुए बारूदी विस्फोट में शहीद 4 डीआरजी जवानों को आज नारायणपुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। अधिकारियों ने पूरे सम्मान के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह घटना छोटे बीठिया थाना क्षेत्र के कोरसकोड़ा इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार डीआरजी की टीम तलाशी अभियान और बारूदी सुरंग निष्क्रिय करने के अभियान पर निकली थी। इस दौरान विस्फोट हो गया, जिस हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाइजीरियाई मादक पदार्थ छत्तीसगढ़ भेजा जाता था। तस्करी से ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन के डिब्बों में छिपाकर डिलीवरी करते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि यह खेप पहले दिल्ली पहुंचती थी, जिसके बाद इसे रायपुर सहित अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की है। महासमुंद जिले में एलपीजी गैस के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षित रखरखाव के लिए सुपुर्दनामे में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल से लगभग 90 मीट्रिक टन से अधिक गैस के गबन का खुलासा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चढ़ने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बीच बस्तर में बीती रात मौसम ने अचानक करवट बदली और देर रात को गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले प्रदेशव्यापी दौरे पर रवाना हुए। कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा पर कल हुए बारूदी विस्फोट में शहीद जवानों को आज नारायणपुर में दी गई श्रद्धांजलि। और बस्तर में बीती रात मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बजने वाले हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे।

राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

और वे ऐसे गीतों से तो हर किसी को आशिकी हो जाती है ना। बहरहाल, यादों की महफिल कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना बरसात फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जलाल मलिहाबादी के बोल थे और शंकर जयकिशन की यादगार बड़ी ही प्यारी सी तर्ज। चलिए आपको बता दें कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों से।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना हमने आपको सुनवाया आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और फिल्म थी लाजवंती। चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें। शकील बदायूनी की रचना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: मतवाला जिया, आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से ये गीत। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के युगल स्वर। लता मंगेशकर का गाया एक और गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3?
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: तो चलिए इस संदेश के बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज।

लता मंगेशकर की गायकी और अभिनेत्री नरगिस का अभिनय दोनों ही कमाल। आपको बता दें, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। एक और फिल्म अभिनेत्री नरगिस की, इसमें लता मंगेशकर की आवाज है इस गीत में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। फिल्म अदालत।

और अब हम बढ़ेंगे अदालत फिल्म के गाने के बाद आह फिल्म के गाने की ओर। आह फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में है, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते।

0: ते थे आपके मनचाहे गीत
1: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज लता मंगेशकर की।

अंदाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस

गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था। आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी और थोड़ा सा उन शब्दों पे जोर भी दूंगी ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई, ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती हैं कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं तो क्यों ना की जाएं। साथियों, जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

तो भाई आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है। गर्मी की तपिश से लेकर सावन की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतजार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

हमारे एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है, कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है। हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना, तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है, मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदें बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदें आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी एक लिखते हैं कि सुहाने सफर को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे, और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, और अभी तपती गर्मी हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए, इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदें बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं, और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी ठंडी हवा धूप छांव रिमझिम बारिश कतरा कतरा पानी मौसम वगैरह वगैरह, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की जरूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है, फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना, तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है, विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं, विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है, जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों आप तो

जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफर एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल जरूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें। सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है। तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं भाई हवाएं न होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है आपके साथ सुरीला सफर की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं, इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों रिमझिम बारिश की बूंदें, सोंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए जरा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर की आवाज में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके सफर इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर ये तो जरूर कहूंगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतजार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं ये, इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है, और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून जैसे मौसम लग रहा है, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश और काली घटाएं छा रही हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो पर बहुत राहत है, ऐसे मौसम में आपसे एक बारिश वाला गीत सुनना चाहूंगा। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में हम सबको खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सावन तो अभी दूर है लेकिन हमें इंतजार है कि रिमझिम बारिश ही हो जाए और इस धूप और गर्मी में थोड़ी निजात मिल जाए, आज का सुरीला सफर और भी सुरीला होने वाला है। भाई सावन दूर है तो क्या हुआ, गीतों के जरिए तो हम सावन के करीब जा सकते हैं ना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदे मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती हैं, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने।

गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। ये सच में साथियों बहुत जरूरी है ऐसे में पानी का बचाव भी करना और जहां तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

कतरा कतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में। इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुंचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं, हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाजत फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज, आदरणीय आशा ताई की। एक साथी ने लिखा है, आज का सुरीला सफर का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं, बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है।

भी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुन कर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हजारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद जरूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहां धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है। वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई, एक साथी लिखते हैं, लो आ गया मेरी पसंद के चुने हुए गानों का आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, सुरीला सफर चलते रहना बहुत जरूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है, आज के सुरीले सफर के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं, विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी, और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, विविध भारती मेरा साथी रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूं, इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई। आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए। बस इस सफर में ना जुड़ पाऊं, मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अरे वाह, प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान, क्या बात है। भाई हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज सुनकर, मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया, मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है। आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ। पॉजिटिव थॉट्स जीवन को जिंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए। लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने लिखा है कि अरे वाह, मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाजत फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बज गया है, क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है, गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं, कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी रहने दो, मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफर को और भी सुरीला बना रहा है। और साथ ही साथियों, आपके कॉमेंट्स तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज ही मुलाकात

बात करते हैं। हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी जिंदगी के सुरीले सफर की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो शेयर करना चाहेंगे?

एक साथी लिखते हैं, विविध भारती सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। आज भी सुबह से शाम तक हमारा FM चालू रहता है। आसपास कोई नहीं है, बस विविध भारती और मैं।

एक साथ ही लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

तो ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मैं शेफाली आपसे अब लूंगी इजाजत, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम के सफर को और भी दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।

नमस्कार साथियों, जिंदगी में भागदौड़ और तनाव इतना बढ़ गया है कि इस बीच हम भूल ही जाते हैं कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुलकर हंसना क्या होता है ये भूल ही जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे मन को हल्का कर देती है। दोस्तों के साथ की गई मस्ती, परिवार के साथ बिताए हल्के फुल्के पल और छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कोशिश कीजिए कि आप खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करें।

रोते हुए ही आता है, लेकिन असली मायने उस जिंदगी के हैं जो मुस्कुराते हुए जी जाएं और हंसते हुए विदा हो जाएं। जीवन में मुश्किलें, दर्द और संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, पर जो इंसान हर हाल में मुस्कान बनाए रखता है वही सच में जीना जानता है। हंसी सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि जीने का नजरिया है जो खुद को भी सुकून देता है और दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी पहचान हमारी मुस्कान से हो।

जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बस कभी कभी हम उसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कभी किसी की बात, कभी कोई याद, तो कभी एक सुकून भरा पल। असली मजा तो इसी में है कि हम इन छोटे छोटे पलों को महसूस करें और दिल से जिएं। तो एक छोटा सा संदेश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाती है बल्कि किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है ना?

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण

और आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ M पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यानम और माहे में होगी।
3: पुदुचेरी
2: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
3: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
4: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
2: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
3: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की। उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।

0: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया कि विविध भारती पर अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चोरी चोरी फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर शैलेंद्र की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, जब ऐसा साथ हो दो दिलों का तो हसीन वादियां भी मुस्कुरा उठती हैं।

सूरत है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के

कली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं।

लाल बंगला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, उषा खन्ना का संगीत। साथियों, ऐसा खूबसूरत साथ जिसे देखकर कुदरत भी मुस्कुरा दे, तो फिर प्यार तो होना ही था। महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का गाना।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981, बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984, दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993, फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नजर में, कुछ तो जादू था उसकी नजर में, पहली ही नजर में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।

0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी श्रीमाली। तो आपकी फरमाइश पूरी हुई साथियों। आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हेतु रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: काजल है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी

0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए, इसे पसंद किया था जिला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत। मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना।
2: मेयर साहब
1: जी, आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
3: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
4: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं। हाँ कहिए कहिए।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
4: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
2: क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
4: अब आपसे क्या कहूँ,

0: मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
2: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: बिल लाओ।
2: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
0: हाँ जी, आप क्यों खामखा परेशान होते? वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
2: जी बहुत अच्छा।
0: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना?
0: जी।
1: आपका मतलब?
0: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आप क्यों खुश? डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
0: जी बहुत अच्छा। आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दूं।
1: जरूर जरूर। पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉबचिंस्की ये लो। चलिए
1: हुज़ूर, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
0: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुज़ूर, आइए।
3: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
4: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
3: मारिया तू चुप रह।
5: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी।
3: ये लाओ मुझे तो
5: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
3: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
5: लो वो लोग आ गए।
1: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
0: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
6: जी जी हाँ श्रीमान,
1: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयाँ खाली थी। मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
6: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
0: हुजूर मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
1: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
0: जी, जी, जी।
1: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
7: डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी
1: है। मेयर साहब
0: जी,
1: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताशवाश खेलने का शौक नहीं?
0: वह बेटा मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
1: साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
8: बड़े लोगों के बड़े शौक।
0: अरे आओ आओ आओ, इधर आ इधर। ये मेरी पत्नी है एना, और ये मेरी बेटी मारिया।
1: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
4: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए,
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
4: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए।

0: मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ
1: जी,
0: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है बताइए, बताइए बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
2: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
0: नहीं नहीं।
2: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
0: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
2: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
0: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
2: अच्छा।
0: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
2: काश हम जा पाते।
0: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल।
3: 700 रूबल?
0: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरड डरड डरड डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
1: जी।
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे, सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते
3: हुजूर।
0: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
4: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
4: जी,
0: आराम। खैर, आराम ही करते हैं। साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
2: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
5: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
6: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेंचें मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
2: देखो, जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ, आसिफ
7: जी,
2: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
7: जी हाँ।
6: अच्छा आसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
2: आसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
6: ओ, तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं, भागो यहाँ से तुम दोनों।
2: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
7: हाँ। मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
6: अच्छा।
7: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं, हाँ, उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
6: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
7: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।

0: ना भी जाइए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी ना?
1: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
0: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है?
1: जी जी।
0: खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
1: आपकी बहुत कृपा है।
0: भैया तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
1: अच्छा मैं जरा देख लूं कहीं मालिक जाग ना गए।
0: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
2: कुछ फरमा रहे थे जज साहब?
3: जज साहब जी, भाई मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें, इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
0: ठीक है ठीक है।
3: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
0: जी
3: आप इधर आ जाइए
0: जी,
3: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्ट मास्टर तुम इस तरफ आ जाओ।
0: बहुत अच्छा।
4: और हम,
3: हमारा क्या होगा?
4: क्या होगा
3: मिस्टर बॉब डॉब, आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं।
2: जज साहब मेरा एक सुझाव है
3: जी,
2: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
3: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा, कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
5: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
2: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के पीछे रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
3: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब, सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
2: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
3: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है, ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
2: बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
3: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
2: जी।
0: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन औसिफ प्यारे मजा आ गया, दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
2: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
0: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
2: अच्छा,
0: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
2: अच्छा,
0: कि मैं कोई बहुत बड़ा असर
2: हूँ।
0: आइए तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
3: मैं जिसका शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। लियाकत इम्तियाज़ की।
0: बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है?
3: हुजूर ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
0: अरे मिस्टर लैपकिन टैपकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
3: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
0: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
3: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
0: ये कितने सारे नोट हैं? अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
3: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
0: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
3: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमूल समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
2: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता हूँ?
0: हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
2: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं?
2: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
2: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
2: जी। हुजूर अगर आप कुछ और ना समझें तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझिए
2: जी, मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
2: जी?
0: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
2: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
2: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास।

0: ये मैं जज, स्कूल सुपरिटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
1: अच्छा?
0: कर
1: दिया। मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए, ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
0: जरूर।
1: देखिए, यहाँ आते हुए रास्ते में न जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया।
0: अच्छा।
1: अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
0: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा, मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
1: जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
2: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंस्की हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
3: श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
0: जमींदार?
1: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
2: पैसे?
1: अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
2: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
3: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूं।
1: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूं।
2: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
3: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
2: ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में ना टक।
1: अरे अरे, आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ किसी काम से आए?
2: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं
3: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
1: इसमें क्या है? मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा,
2: धन्यवाद श्रीमान।
0: कितने गधे हैं ये लोग,
1: मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
4: मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
1: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
4: बहुत अच्छा मालिक।
1: अरे सुनो से
4: जी,
1: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
4: बहुत अच्छा।
1: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
4: बहुत अच्छा
1: अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
4: बहुत अच्छा।
1: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
4: लाइए। शुरू।
1: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
5: मैं ऐसे कहूँ?
0: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
5: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध बुध भूल जाता हूँ।
5: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
5: प्यार? वो क्या होता है?
0: ये भी जान जाएंगी, मेरे नजदीक आइए।
5: हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मुझे जाने दीजिए।
6: मारिया, तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
1: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता, मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
6: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
5: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
1: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
7: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए, शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
6: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना, जानते हैं साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
7: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
1: पर है। ये सच कह रही हैं, मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
7: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं,
1: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
7: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से।

0: जनरल से। ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
1: हुजूर गाड़ी तैयार है।
0: हम अभी आते हैं। क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
2: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
0: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर इस वक्त आपके पास पैसे कम हो।
2: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल
0: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
2: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
0: ये लीजिए, एकदम नए नोट है।
2: नए नोट, नई आशा। अच्छा मैं चलता हूँ।
3: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
2: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
0: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
3: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। हाँ। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
0: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। एना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
3: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। हा? देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
0: और फिर देखना मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
3: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना
0: है। बिल्कुल।
3: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह, बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है।
0: ओ आओ भाई, बाबो डॉक।
4: मेयर साहब, आपको और मैडम ऐना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई।
5: और डॉक चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
0: शुक्रिया शुक्रिया। ओ हो, आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
6: मुबारक हो मेरा था, मुबारक हो। मिसेज है ना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
7: भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है।
6: मैं
8: लेकिन ये बात बनी कैसे?
0: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लैपकिन कैप्टन? अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा,
3: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
9: मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
3: मारिया बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
9: हूं। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
3: हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
0: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा, शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
7: अवश्य जाइए, अवश्य जाइए, बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही शोभा देता है।
6: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
10: भाई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
7: हुजूर, इस गरीब को भूल न जाइएगा, मुझे आप ही का सहारा है।
10: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
3: ओफो, आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
0: क्या?
3: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
11: अंधेर हो
0: क्या बात हो गई?
11: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
0: अच्छा,
11: लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो, जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
0: सर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने?
11: पूरी बात तो सुनिए साहब।
0: क्या?
11: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही दिया।
0: तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
12: हाँ, मेरे साथ ठीक कहते।
11: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था। कोई लफंगा था।
0: क्या बकते हो तुम?
11: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।

0: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भोंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
1: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
0: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
2: क्या बताने जी है ये?
0: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
3: क्या कहा?
0: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
1: पड़ेगा।
3: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग।
1: बंद करो ये बकवास।
4: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ
3: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
2: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
5: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
6: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती
1: है? तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहां से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से।
4: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
1: कौन?
7: मेयर साहब हाजिर हैं।
1: क्या बात है, तुम कौन हो?
7: सरकारी हरकारा।
1: सरकारी हरकारा?
7: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहां पधारे हैं और होटल में रुके हैं।
1: अच्छा,
7: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
0: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग, ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी।

0: सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म साहिब।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इसमें बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, यार मुझे मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले लो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चल रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए,
1: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे,
2: हाँ।
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी,
1: भारतीय भवन के मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ हाँ।
1: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ,
1: फिर वो उधर फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी,
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आप आखिर क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था समझिए 23 साल,
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धदेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
2: जी।
1: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते ही उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ मिल गया, ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त।
2: बिल्कुल।
1: तो

0: मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, वो मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजर रही है आँख से, तो मैं काफ़ी
1: चमक
0: आगे
1: जाऊंगा।
0: चल। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब।
1: जी
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, डुमस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
1: हाँ
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ, मैं सिनेमा मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है, पांच आने में फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, अठन्नी में पिक्चर
1: काम बन
0: देखता
1: जाता
0: था,
1: था।
0: काम बन जाता
1: कौन
0: था।
1: कौन सी फिल्में देखी
0: सब
1: होंगी?
0: कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, वी शरणम की सारी, मतलब
1: गजब।
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आ गए, कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था, तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: मैं क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, शीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम हो सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमच भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे रही, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपना उस तरह सोचने लग गया। जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले तो, सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी,
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले, तो हमने वो शॉट जैसी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह,
0: तो जैसी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो जैसी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया, वो चीज उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया, और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीजें देखी वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कंप्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह

0: जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है, उसके साथ दो चार दिन काम कर लिया। एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे। तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ।
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं। तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए। तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ। मैं बोला आज देख लीजिए, फिर पांचवा मेरा फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर मैंने बताया आपको सचिवालय में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना, शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सचिवालय में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ,
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँ। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में

0: उनकी गाड़ी होती थी,
1: हाँ
0: उनके साथ राज कमल स्टूडियो जाते थे, उनकी गाड़ी में बैठ के वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे। फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी जाओ, तेरे को छोड़ के आ जाएगा। वो मुझे एक माँ छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक बीएसटी की स्ट्राइक हो गई थी।
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला चोनी लेता था, आठ आने लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ध्यान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे, इनके डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए और हम लोग सब जो है तो बैठे, वो तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे। फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से तीन सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहां नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके, तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर, भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोटेक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीजें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

0: थप थप करते करते पहले ही और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा अपने आप खाओ, ठीक है ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश तू क्या कर रहा है। मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सारी आमदानी होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोला रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है कोर्ट सीन में।

0: लंबे डाल लगते, तो वो मैंने लिख दिया वहाँ पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूँ क्यों गया। तो ऐसा भी किस्सा, तो अलबत्त खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यकीन कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो मैं
1: तो। लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपरहिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था।

0: गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है।
1: जी जी।
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे। वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में एक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे।
1: जी जी।
0: तो वैसे ही पॉइंट में बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर में बहुत देखिए, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आप हूट कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनीवेज वहां देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी। देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं।
1: अरे बाप रे।
0: तो जज जी ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था।
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो। तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने।
1: हाँ हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं।
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया।
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ।
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है।
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट।
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों है, लिखा बच्चे के हाथ में।
1: हाँ।
0: मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है।
1: हाँ।
0: फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ।
1: हाँ, तुम मुझे
0: हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: बैठा हूँ।
0: हाँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते
1: आए है।
0: फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज नरेशन में ये सब मत बोलो।
1: हाँ।
0: चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी। जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी।
1: हाँ।
0: और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश।
1: अच्छा।
0: शॉर्ट शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे। अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो
1: रंजीर।
0: तो अब तो मैं हीरो हिट हो गया हूँ।
1: हाँ।
0: तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें।
1: हाँ।
0: कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे।
1: हमने
0: कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन।
1: हाँ।
0: अगर आप रंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए। और इनकी डेटिंग भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे।
1: हाँ, वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था।
1: हाँ।
0: उनको छोटे भाई का रोल करना था।
1: हाँ।
0: अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं।
1: जी।
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है।
1: हाँ।
0: अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना उससे बेटर रोल है कभी कभी में आपका। दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक
1: गुलशन आएगी,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए।
0: हाँ, कोई बोल देता बीज डाल रहे। कोई भी गया।
1: जी जी जी।
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो। तो उनको रोल सुनाया गया।
1: हाँ।
0: कि भाई देखिए लेंथ वाइज हुआ है, पर छोट लो मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कि वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे। जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए। ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सलीम जावेद में कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ, अरे भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे।

0: लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
1: मेरे पास माँ है।
2: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी सर।
3: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट है?
2: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना अभी।
3: आप चीफ असिस्टेंट हो?
2: अब हो गया सब जगह। तो वो मैंने कहा ना, पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे। जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
3: तो सारी चीजें सब
2: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
3: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
2: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम बेलो, दो ही गाने थे। वो कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
3: नीतू सिंह।
2: हाँ, नीतू सिंह। बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए। क्या होता था, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए, अपने
3: मंगेश
2: देसाई।
3: री रिकॉर्डिस्ट बहुत बड़े,
2: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
3: जी।
2: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
3: वाह वाह वाह।
2: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था।
3: हाँ।
2: अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जज जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते फौरन, कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
3: अरे बाप रे।
2: तो जज ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
3: हाँ, वो अपने नरेशन के समय
2: वही क्या। तो कहने लगे नहीं बेटा, वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पर गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: अर्थ है
1: कि आप मरते हैं हम पर।
0: बड़ी बात है,

0: एक जो इनका था देवेंद्र वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो ये जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं हम दीजिए, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज्यादा उस वक्त बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज, तो कहने लगे ठीक है हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी,
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने

0: फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार
1: हाँ
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर के शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर के शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, और अनाउंस हुई है स्क्रीन में उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था,
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से
1: ऐसे
0: होता
1: होता
0: था,
1: था।
0: बाद में कुछ आपस में जो भी होगा नहीं बनी पिक्चर, हो इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके
0: मैं
1: थे
0: बन चुका था
1: तब तक,
0: डायरेक्टर,
1: तो बसेरा,
0: बसेरा
1: सवार।
0: आगे थी,
1: हाँ
0: बसेरा आगे थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था,
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना।
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी,
1: जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं, तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था, ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए,
1: हाँ
0: भाई जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार सब,
1: जी
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, इसमें डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए,
1: जी जी
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे, कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे, तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख, तो मैंने कहा 21 लाख 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी,
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए, बोले नहीं हमको 21 अभी मिले नहीं हैं, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं, अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा, ये उसमें पार्टनर भी थे उस पिक्चर
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था,
1: हाँ
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई, तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी, लेकिन एक छत्र छाया इनकी कंपनी ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर, तो मैंने कहा भाई मैं मुझे साथ ही दे दीजिएगा मैं जाता हूँ, तो बोले आपने कहीं जाना था क्या, कहा आपने, मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन वन लाइनर मार के मैं भी चला गया, तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे,
1: जी
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे, जावेद साहब को सर सर के मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से,
0: हाँ थोड़ी देर के बाद, जब मेरे हो गया काफी, बाद में उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात ये है,
1: हाँ
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी,
1: करेक्ट है,
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो, ये अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था,
1: जी
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा, तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे,
1: ओए होए।
0: मुझे समझ नहीं आया, अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए हैं, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है,
1: हाँ
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है, ये
1: जी
0: पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की, 12 रील में पिक्चर बंद हो गई,
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है।

0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर भी डेटे हैं,
0: हीरोइने भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए। अब साहब दो तीन साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक दो तीन साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों की।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, बोझा, चंदरपुर, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बंसीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदी कला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये कंडराजा, बरडांड, दांती ढाब, घटगांव, बोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, बाला लोंगरी, चरईमारा, रानी कोम्बो, बिलासपुर, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, साजा पानी, तीता पाकेर, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू, बोरो और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 92 है। ये आमगांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुमकेला, डोंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये लबेद और गीत कुमारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन

0: क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 38 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोलापारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायलीखंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाल, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरी पानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म शिवाय से। स्वर दिया है कैलाश खेर ने, सईद कादरी की रचना है, मिथुन का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, मोहम्मद इरफान की आवाज में फिल्म द एक्सपोज से ये गीत। समीर अंजान की रचना है, हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म जीरो से। स्वर दिया है अभय जोधपुरकर ने, इरशाद कामिल की रचना है, संगीत दिया है अजय अतुल ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म कबीर सिंह से। स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने, गीत और संगीत मिथुन का है।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में फिल्म गर्व 2 का ये गीत। जेलिस शिरवानी की रचना थी, साजिद वाजिद का संगीत था। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म खानदान से। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। राजेंद्र कृष्ण की बोल है, रवि का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल, सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्रावया रामटेके, भिलाई चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद और शहनवाज अहमद सिद्दीकी, मदनपुर से हमारे श्रोता साथी हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफाज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत और प्रियम थांदी, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी, राजस्थान गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा और सबा अंसारी, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस,

की लवली आरती अरोड़ा, महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, लुथरा खमरिया से हमारे श्रोता साथी हैं अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, सावतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, शेख रहीमुन्ना, बेगम राबिया शेख, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकर। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म खानदान का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेंगे सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, साथ में हैं रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा मरावी, पुष्पराज ऋषभ मरावी। नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां और महक जहां। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, साहिल कांगड़ा। दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा, सुरेश नारंग, पथिक और कृषिव। उदयपुर से कांता देवी, फरीदा शबनम, किरण, रंजना, शांति, सबीहा और रईसा खातून, साथ में है भारती देवी। पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानून, रविंद्र और रौनक सेन। आकोट से विनायक बिंडे, मंगला, विजय, शुभम बिंडे, पवन जरिए और के संजीव डाबेराव। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरष। पीपर पारा पलचुआ मुंगेली से हमारे श्रोता हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, अशोक तोलानी, लाला मोहन, बाबू भाई, ये हैं उदयपुर से। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर। अमरावती से कमरुल्ला और नसीम बेगम। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म वापस का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, ये हैं लगान पंढरिया से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, उमरखेड़ महाराष्ट्र से रज्जाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा परवीन, आसिया परवीन, निमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू, सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, वसीम, ममता और इनके साथी हैं। भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्किन। सहारनपुर से हसन नाजिया, इब्राहिम, सैयद मसरूर, साइना। उदयपुर से हमारे श्रोता हैं गोपाल तंबोली, कांता, तिलक, किरण, सक्षम और लावण्या तंबोली, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हैं लक्सर हरिद्वार से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, बठिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, एकम, दमन और अभिजोत, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक और मंजू भाटिया, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर और इनके साथी। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म उपासना का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।
1: सिखा दूं?

कार्यक्रम के इस भाग का अंतिम गीत लीजिए, सुनिए एक मुसाफिर एक हसीना से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, SH बिहारी की रचना और OP नैयर का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कृष्टि पटवा, सनावत मध्य प्रदेश से अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना, सनावत से ही किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारवी और प्रणव सावले, आकोट से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजू धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, तखतपुर से जैमुन कोल, दिलीप कोल, भुवनेश्वर कोल, रामायणी कोल, नानघाट से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, टिकेश्वर राजपूत और रितु राजपूत। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का ये भाग यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ग्राम सभा का प्रसारण प्रतिदिन की तरह आप सुनेंगे संध्या 7:20 पर। इसमें आज बेरा के गोट का विषय होगा तेंदू पत्ता ले रोजगार। साथ ही आप सुनिएगा आकाशवाणी बिलासपुर के 35वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। संपादन एवं प्रस्तुति गोपाल कृष्ण पांडे और अभिनव गौराहा की है। संयोजन किया है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने। साथ ही आप सुनेंगे मौसम और मंडी का हाल।

रात 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में कलाकार होंगी आशा भोसले। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीकंथा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। अब लीजिए सुनिए कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर। कल सुबह 9 बजे सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई। कलाकार होंगे कौशल भानु, उर्मिला देवांगन, आत्मा कोसा और उनके साथी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, कल 6:30 पर खेती की बात में जानकारी दी जाएगी, जैव उर्वरक एवं उनके कार्य। वाचन स्वर होगा अभिनव गौराहा का। प्रातः 6:45 पर नौविहान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। कल सुबह 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय रहेगा दिन में 11:00। सुबह 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा जगत, इसमें आज की बात और साथ ही सुनिएगा क्रम प्रकृति एवं पर्यावरण। कल शाम 6:20 और शाम 7:00 प्रतिदिन की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। श्रोताओं, ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी। आलेख प्रमोद कुमार निर्मल का है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भी 1 से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। 30 तक चलने वाले इस कार्य के दौरान प्रगणक जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर आवास और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ ही लोगों द्वारा पोर्टल पर स्वगणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन भी कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संपादित की जा रही है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 545 गणनाकर्ताओं और 92 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले 16 से 30 अप्रैल तक जिले में स्वगणना का कार्य किया गया। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्री, विधायक और अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सुशासन तिहार की तैयारियों के संबंध में जिले के प्रभारी सचिव PS एल्मा ने बीते 30 अप्रैल को अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए, साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। उन्होंने जन समस्या निवारण शिविर स्थलों पर पेयजल, बैठक व्यवस्था और शिविर आयोजन के लिए स्थान चिन्हांकन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, जिले के प्रभारी सचिव PS एल्मा ने बीते 30 अप्रैल को मानपुर स्थित PM श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ ही स्कूल में पेयजल, साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। प्रभारी सचिव

0: ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने, रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने और शैक्षणिक गुणवत्ता में लगातार सुधार करने को भी कहा। श्रोताओं, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कलेक्टर तुलिका प्रजापति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने पिछले दिनों बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नशा नियंत्रण और जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर वहां आवश्यक संकेतक और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने, कार्य योजना बनाने को भी कहा गया। श्रोताओं, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने आगामी 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। हालांकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नलकूप खनन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन नए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा। श्रोताओं, जिले के अंबागढ़ चौकी वन परिक्षेत्र में आड़ेझर बीट के अंतर्गत आने वाले गांवों में पिछले दिनों वन विभाग द्वारा जीरो फायर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से जंगल को आग लगने से बचाने और आग लगने के संभावित कारणों के उपायों को लेकर चर्चा की। साथ ही ग्रामीणों को जलती हुई बीड़ी सिगरेट जंगल में नहीं फेंकने और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का लापरवाही पूर्वक उपयोग करने से बचने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिससे पेड़ों, वन औषधियों और वन्य जीवों को नुकसान होता है। इसी उद्देश्य से वन विभाग द्वारा जीरो फायर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: मोहाला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आलेख प्रमोद कुमार निर्मल का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार है मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन के 100% आपूर्ति सुनिश्चित करे के दिन निर्देश। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर और सरगुजा जिला के दौरा में निकले। आने आने योजना के लीन जानकारी। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा कवर्धा के करिया आमा क्षेत्र में जंगल सफारी के करें लोकार्पण। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार हा कहे है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद ये सुनिश्चित करेगे है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन के 100% आपूर्ति करे जाए। सरकार हा नागरिक मन ला सलाह दीन कि ओमन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के घबराहट में खरीदी ले बाँचें, काबर के सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के उपलब्धता सुनिश्चित करे बर हर संभव प्रयास करत हे। मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के सेती एलपीजी के आपूर्ति प्रभावित होवत हे। सरकार हा घरेलू उपयोग बर एलपीजी के आपूर्ति ला प्रमुखता दे हे। घरेलू खपत ला पूरा करे बर रिफाइनरी ले एलपीजी के घरेलू उत्पादन बढ़ाए गए हे। इही बीच महासमुंद जिला में एलपीजी गैस के कथित गबन के बड़का मामला आगू आए है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षित रखरखाव बर सुपुर्दनामा में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल ले लगभग 90 मेट्रिक टन ले ज्यादा गैस के गबन के खुलासा हुए है। एकर अनुमानित कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपया बताए गए है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, निदेशक और प्लांट प्रबंधक कूट रचना करके गैस खाली करें। ये मामला के जांच जारी है। बताया जाते है कि जिला के सिंघोड़ा पुलिस 5 दिसंबर महीना में एलपीजी गैस के 6 कैप्सूल ट्रक ला जब्ती करे रहीस। गैस ले भरे ए ट्रक ला सुरक्षित रखे बर ठाकुर पेट्रोकेमिकल ला देगे रहीस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बेंच हंटिंग यानी अपन पसंद के पीठ के आगू मामला सूचीबद्ध कराए के कोशिश ऊपर कड़ा रवैया अपनाए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के खंडपीठ स्पष्ट करे है कि इस संबंध में जारी प्रशासनिक सर्कुलर केवल सावधानी बरते बरहे। एकोनो न्यायाधीश ला सुनवाई ले अलग होए बर बाध्य नहीं कर सके। हाईकोर्ट ह कहे हे कि न्यायिक विवेक सर्वोपरि हे और अदालत अपन फैसला ले बस

0: स्वतंत्र है। कोठा इहु कहे है कि सर्कुलर के उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के निष्पक्षता बनाए रखे और निहित स्वार्थ पर अदालत के दुरुपयोग ला रुकना है। मामला के अगला सुनवाई अवैया 18 जून के होही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर और सरगुजा जिला के गांव मन के औचक दौरा करें। सबले पहले मुख्यमंत्री जशपुर जिला में भैंसामुड़ा गांव के चंदागढ़ शासकीय स्कूल पहुंचीन और क्रिकेट खेलत लैका मन संग ओमन के खेल में शामिल हुईन। एकर बाद गांव में चौपाल लगा के श्री साय ग्रामीण और लैका मन ले गोट बात करें। मुख्यमंत्री है जिला कलेक्टर ला निर्देश दिन कि स्कूली लैका मनला जरूरी क्रिकेट किट और स्पोर्ट ड्रेस उपलब्ध कराए जाए। उन्हें ग्रामीण मनले चर्चा करत श्री साय गांव के स्थिति और विकास कार्य के जानकारी लेन। एकर बाद मुख्यमंत्री है भैंसामुड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जात मकान के निरीक्षण करें। ओमन खुदे करनी उठा के सीमेंट गारा ले ईंटा जोड़िन और यहां काम करत मजदूर मन ले ओमन के दैनिक मजदूरी और पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी लेन। मुख्यमंत्री चंदागढ़ में किराना दुकान चलावत लखपति दीदी सुमिला कोरवाले मिलिन और मुद्रा योजना के तहत ओमन ले मिले सहायता राशि के बारे में जानकारी घलो लेन। मुख्यमंत्री के दौरा के दूसरा पड़ाव सरगुजा जिला के सिलमा गांव में रहिस। यहां ओमन शांतिपारा बस्ती में चौपाल लगाइन और स्थानीय लोगन मन ले चर्चा करत सरकारी योजना के मौजूदा स्थिति के जायजा लेन। मुख्यमंत्री है ग्रामीण मन ले बताइन कि सुशासन तिहार के दौरान प्रशासन खुद जनता के द्वारे तक पहुंची और ओमन के समस्या के मौकाच मा समाधान सुनिश्चित करी। महासमुंद जिला के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड के परीक्षा के दौरान कथित रूप ले खुले आम नकल कराए के मामला में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है स्कूल शिक्षा सचिव ला नोटिस जारी करके शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करे के निर्देश दे है। न्यायाधीश रमेश सिन्हा और रविन्द्र कुमार अग्रवाल है इस मामला की शिकायत के बाद करेगे कार्रवाई के बारे में शपथ पत्र में विस्तार ले जानकारी देबर कहे है। एक जनहित याचिका के मुताबिक भंवरपुर के एक छात्रा 12वीं के पर्चा के दौरान स्टिंग ऑपरेशन करके ये आरोप लगाए रही कि शिक्षक विद्यार्थी मल्ला नकल करे में मदद करत रहीन। छात्रा एक शिकायत स्कूल के प्राचार्य समेत दूसर अधिकारी मन करा घलो करे रही लेकिन एकर ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं हुई। छात्रा के आरोप है कि ओखरे ऊपर ही स्कूल प्रबंधन कोती ले नकल करे के आरोप लगाएगी जेखर ले व्यथित होके छात्रा बीमार पड़ गई। एकर बाद स्वतः संज्ञान लेवत अदालत है राज्य के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव समेत दूसर ल प्रमुख पक्षकार बनाए हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो पांचे समाचार कोती। कांकेर और नारायणपुर जिला के सीमा में काली IED विस्फोट में शहीद हुए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के 4 जवान मले 3 जवान ल आज नारायणपुर पुलिस लाइन में आखिरी सलामी देगी। उन्हें एक दूसरा शहीद जवान ल कांकेर ले जाएगी जहां ओमन ल श्रद्धांजलि देगी। नारायणपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और जिला कलेक्टर नम्रता जैन के अलावा जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मन शहीद जवान ल श्रद्धांजलि दिन। एकर बाद जवान मन के पार्थिव शरीर ओमन के गृह ग्राम पर रवाना करेगी। बस्तर IG है बताइन कि माओवाद के सिराय के बाद अबुझमाड़ के जंगल में माओवादी मन के डंप के रिकवरी के काम करे जाते। यही दौरान एक घटना हुई। बता दन कि नारायणपुर और कांकेर जिला के सीमावर्ती इलाका में स्थित अबुझमाड़ के मरकाबेड़ा जंगल में IED निष्क्रिय करे के दौरान ओमा विस्फोट हुए ले 4 जवान शहीद हो गए। कवर्धा में भोरमदेव मंदिर करा प्राकृतिक सौंदर्य ले भरे पूरे और जंगल के बीच स्थित करिया आमा क्षेत्र में जंगल सफारी विकसित करेगे है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद संतोष पांडे है आज ये परियोजना के लोकार्पण करें। ये जंगल सफारी घना वन ऊंचा पहाड़ी और समृद्ध जैव विविधता के बीच पर्यटक मनला न केवल रोमांचक अनुभव दी ही बल्कि छत्तीसगढ़ ला प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको टूरिज्म के नक्शा में नवा पहचान मिली। करीबन 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अभ्यारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी रूट तैयार करे गए है। सफारी के मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के तीर में है।

कमा उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा हकीन के ए परियोजना ले स्थानीय युवा मन बर रोजगार के नवा मौका बनही। विशेष रूप ले स्थानीय युवक युवती मन पर्यटक मन बर गाइड के रूप में काम करे सकें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय है संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी ल भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त करे है। श्री जोशी अपन लोकप्रिय फिल्मी गीत और विज्ञापन पर देश भर में जाने जाते। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हकीन के ओखर अगुवाई में प्रसार भारती नवा ऊर्जा उद्देश्य और रचनात्मक शैली के संग काम करही। श्री जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष घलो रह चुके हैं। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के एक मामला में बड़का कार्रवाई कर दिल्ली ले दूजे आरोपी ल गिरफ्तार करे है। मिले जानकारी के अनुसार नाइजीरिया ले मादक पदार्थ छत्तीसगढ़ भेजे जात रहिस। तस्कर एला ब्लड प्रेशर मापे वाला मशीन के डिब्बा में लुका के डिलीवरी करत रहिन। पुलिस जांच में पता चले है कि एक खेप पहली दिल्ली पहुंचे जेखर बाद एला रायपुर समेत दूसरा जगह में भेजे जात रहिस।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। लीजिए सुनिए फिल्म एतबार का गीत। आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजें हैं, हसन कमाल की रचना और बप्पी लहरी का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी, करिश्मा सुमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति और सक्षम शाक्य, साथ में है डी के शाक्य, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके, हीरामन शेंडे, प्रतिभा गोडाने, तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा वंडलकर, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि और कृष्णा घोटके, डोगरगांव से हमारे श्रोता साथी हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, मिथिलेश यदु, विष्णु साहू, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी, भाटापारा से सोहन जोशी, पायल जोशी, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद अरमान, नवेद तबस्सुम अंसारी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, खंडवा मध्य प्रदेश से कैलाश फुलमाली, दीपक समर और वैदिका फुलमाली, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश जीविका दले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा और अविका, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बब्बू डब्बू, सुभाष योगी, बबीता मेघलानी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल, धमधा सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, भिलाई नगर से हमारे श्रोता हैं अशोक श्याम कुंवर।

मिला आसमा श्याम कुंवर, नथाना पंजाब से जसविंदर जस्सी, हरजिंदर छिंदा, सीता गीता, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से कुनिका और पीयूष सिक्का, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सी टी दीवाना, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा, हनुमान बोर्ड के उत्तम जमदाड़े, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। इसी गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे दीपक, अंकुर राघव गुप्ता, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, वीरमगांव जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमीला भावेश, सन्नी जैमिन कुमार, हेतल कृष्णा भावसार, ठाकुरवाड़ा फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, अविराज सिंह, गुरलाल, शुभदीप, गुरमान सिंह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, बिलाईगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या दिवांगन, हेमलता, डिंपल दिवांगन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म एतबार का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। कार्यक्रम कानून की बात थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कानून की बात। इसमें सुनिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर जानकारी। जानकारी दे रही हैं अधिवक्ता कुमारी निशा गोडबोले। ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इन विषयों पर बातचीत करने और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अधिवक्ता सुश्री निशा गोडबोली। निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैडम।
0: निशा जी हमारे आज के कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की चर्चा हम कर रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्यों बना?
1: मैडम ये पहले तो अपन भारतीय संसद द्वारा जो गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो 15 के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा की बात के लिए है। इसे दो समूह में स्थापित किया गया है। यह कानून बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में बनाया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों के कानूनी जानकारी देना, उनको कानून से अवगत कराना और जैसे बहुत सारे स्वास्थ्य शिक्षा इनको उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
0: तो इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है?
1: भारत में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोगों के गठन का कानूनी ढांचा बनाया गया है। यह 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए नीति, शिकायत निवारण और न्यायालयों की स्थापना को सुनिश्चित करता है तथा यह अधिनियम बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच, बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक

0: बढ़ाने और हितैषी दृष्टिकोण के साथ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र है।
1: अच्छा, तो बाल अधिकार आयोग की विशेषताएं क्या-क्या हैं?
0: केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य सरकारों द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है तथा प्रत्येक जिले में जिले स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड इन सब का स्थापित किया गया है मैडम इसमें।
1: जी मैडम, हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या किसी तरह की परेशानी उसको आती है या उसके माता-पिता को ये लगता है कि कहीं किसी समाज में किसी जगह पर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो शिकायत दर्ज करना चाहते हैं अपने बच्चे की तरफ से, तो बाल संरक्षण आयोग में शिकायत कैसे दर्ज होगी और इसमें शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है?
0: मैडम इसमें शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, इसका नाम है बाल ई बाल निदान के माध्यम से शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसमें
1: अच्छा
0: इसमें यूजर को पहले अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होता है। इसमें शिकायतकर्ता की गोपनीयता रखी जाती है
1: अच्छा
0: और जैसे गंभीर जघन्य अपराध होते हैं उसमें आयोग स्वयं अपना जांच कर सकती है।
1: अच्छा स्वतः संज्ञान
0: हाँ,
1: लेकर
0: स्वतः
1: आयोग
0: संज्ञान ले सकती है।
1: जांच करती है। तो कौन सा पोर्टल आपने बताया, पोर्टल का नाम?
0: ई बाल निदान
1: तो इसमें जाकर जो शिकायतकर्ता हैं
0: ईमेल के
1: वो
0: माध्यम से
1: ईमेल के
0: शिकायत।
1: माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। तो किस तरह से मतलब शिकायत दर्ज की जाएगी, उनको एक पूरा प्रारूप बनाना पड़ेगा या उसमें कुछ एक इस तरह की जानकारी होती है कि आपको ये चीजें भरनी है वहां पर?
0: मैडम उसमें नाम रहेगा शिकायतकर्ता का नाम और किस क्षेत्र में ये कारित हुआ है घटना।
1: अपराध कहां पर
0: हाँ
1: हुआ है?
0: वो उस टाइप का रहता है।
1: अच्छा ठीक है। तो क्या-क्या कार्य करता है बाल संरक्षण आयोग, और अगर शिकायत किसी बच्चे की तरफ से आती है या किसी के माता-पिता की तरफ से आती है तो किस तरह से बाल संरक्षण आयोग उस बच्चे को संरक्षित करता है या उसकी शिकायतों के ऊपर संज्ञान लिया जा सकता है?
0: इसमें बाल संरक्षण में सरकारी नीतियों की समीक्षा और बाल न्यायालयों के माध्यम से मामले में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करता है और यह बच्चों के संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करता है तथा केंद्र राज्य सरकारों के उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी देता है। और इसमें जागरूकता बच्चों के से संबंधित मुद्दों का समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी ये अधिनियम करता है।
1: अच्छा, तो किस तरह से जागरूकता फैलाता है ये अधिनियम?
0: विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी देता है और नीतियां बनाता है इसमें।
1: तो वो लोगों को कैसे पता चलता है मैडम, इसके लिए कोई शिविर वगैरह आयोजित होते हैं या किसी तरह की जानकारी लोगों को जाकर दी जाती है?
0: ये बच्चों को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के अधिनियम कानून इसमें बनाए गए हैं जैसे किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम। उसमें प्रत्येक जिले अलग से एक संस्था है जो बच्चों के लिए कार्यरत है।
1: कौन सी संस्था है?
0: ये है किशोर न्याय बोर्ड, प्रत्येक जिले में स्थापित है और इसमें बच्चों से संबंधित संपूर्ण जैसे भरण पोषण और उनके बाल आश्रय और उनके पुनः प्रवास के लिए अहम
1: उनकी
0: भूमिका
1: व्यवस्था।
0: निभाता है उसमें।
1: अच्छा
0: हाँ, उनकी व्यवस्था करता है।
1: तो इससे क्या लाभ हैं? बाल संरक्षण आयोग 2005 जो इस अधिनियम का गठन जो किया गया है, इससे बच्चों को क्या लाभ है?
0: इसमें मैडम यह अधिनियम शोषण बाल श्रम हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच को सुनिश्चित कर बाल प्रवास में अहम भूमिका निभाता है। जैसे बाल श्रम और तस्करी की रोक, बाल श्रमिकों के शोषण और तस्करी के खिलाफ कार्यवाही और
1: किस तरह
0: बच्चों
1: से,
0: के
1: मतलब बच्चों की तस्करी की बात
0: हाँ
1: कर रही हैं
0: बच्चों की
1: आप?
0: तस्करी
1: जी
0: जैसे बाल श्रम करते हैं तो वो उन सब के शोषण या तस्करी के खिलाफ कार्यवाही और बच्चों के लिए पुनः प्रवास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता
1: अच्छा,
0: है।
1: उनके
0: और
1: पुनः प्रवास के
0: हाँ,
1: लिए।
0: और शिक्षा का अधिकार जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुनिश्चित दिशा निर्धारित करता है ये।
1: जी
0: और एक सुरक्षित वातावरण भी देता है जैसे जरूरतमंद बेसहारा पीड़ित बच्चों के साथ के लिए उचित भोजन शिक्षा और खाद्य के साथ उनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देशित करता है।
1: दिशा निर्देश, तो कुछ संस्थाएं होंगी जिनको वो दिशा निर्देश देता होगा आयोग?
0: बाल संरक्षण आयोग के तहत बहुत सारे अधिनियम कानून पारित किए गए हैं। इसमें है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नामित प्राधिकरण बनाया गया है जैसे
1: जी
0: किशोर न्याय अधिनियम 2015 और लैंगिक अपराधों के से बच्चों का

0: संरक्षण अधिनियम 2012 और निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009, इस
1: जी
0: तरह के कानून बनाए गए हैं मैडम।
1: जी तो जैसे अभी अपन ने बात की किशोर न्याय अधिनियम 2015 की, तो किशोर न्याय अधिनियम क्या है, इसको क्यों बनाया गया है और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं?
0: किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह अधिनियम बालकों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित है।
1: जी
0: प्रत्येक जिले में न्याय किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा में एक मजबूत पहल है मैडम।
1: जी
0: इसके मुख्य उद्देश्य विधि से संबंधित बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार और विकास सुनिश्चित करता है।
1: जी कितने सदस्य होते हैं निशा जी, किशोर न्याय का जो अधिनियम?
0: इसमें मैडम 4 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय में, न्यायपीठ में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 1 महिला सदस्य होते हैं।
1: अच्छा, तो बच्चों को किस किस श्रेणी में बांट सकते हैं इसमें जो किशोर न्याय अधिनियम है?
0: बच्चों को इसमें 2 श्रेणियों में बांटा गया है मैडम। जैसे पहला है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
1: जी,
0: और दूसरा है देख रेख और संरक्षण और जरूरतमंद बालक।
1: अच्छा,
0: जो जैसे इसमें बेघर और जो उस समय लागू श्रम आयोगों का उल्लंघन और भीख मांगते हुए सड़कों पर रहते हैं उनके लिए किया गया है।
1: तो मैडम जैसे आपने बताया कि अलग अलग श्रेणी है बच्चों की, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से उस तरह की परवरिश या उस तरह का संस्कार या उस तरह का माहौल नहीं मिलता है कि समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए या बड़े हो पाए, और कहीं ना कहीं कुछ माहौल या कुछ समाज की परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ गलत चीजें उनके हाथों होती हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो विधि का उल्लंघन करते हैं या कानून के हिसाब से जो नहीं चल पाते, उनके लिए इस किशोर न्याय अधिनियम में क्या प्रक्रिया है, कैसे उनको सुधार की तरफ ले जाया जाता है?
0: जैसे कोई बालक विधि का उल्लंघन करता है तो उसको जैसे पुलिस रिपोर्ट होती है
1: जी,
0: तो उसमें हम लोग किशोर न्याय बोर्ड एक विशेष पुलिस बल इकाई है उसके माध्यम से पुलिस अधिकारी को सौंपा जाता है तथा 24 घंटे के अंदर बोर्ड के समक्ष को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है
1: जी।
0: और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा और जेल में नहीं डाला जाएगा।
1: अच्छा।
0: उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है और इसमें जैसे जानकारी मिलती है तो माता पिता, अभिभावक और परिवेक्षक अधिकारी को उसकी जानकारी दी जाती है
1: जी। तो परिवेक्षक कौन लोग होते हैं मैडम?
0: परिवेक्षक मैडम जैसे माता पिता, अभिभावक, जैसे कोई हॉस्टल में रहते हैं छात्र तो उसके अंडर में जो
1: वार्डन होता है,
0: ये इस टाइप के।
1: जी जी, कहाँ कर सकते हैं, जैसे किशोर न्याय 2015 जो अधिनियम है उसके तहत अगर किसी बच्चे के साथ कुछ अन्याय होता है, कुछ परेशानी आती है, तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है?
0: इसमें मैडम विशेष किशोर पुलिस इकाई के किसी भी अधिकारी से की जा सकती है और दूसरा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य से की जा सकती है
1: जी।
0: या फिर तीसरा है किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष या सदस्य से की जा सकती है और किशोर न्याय बोर्ड के बाद अगर सत्र न्यायालय में भी अपील की जा सकती है इसकी
1: जी,
0: और बाल कल्याण समिति के बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है इसकी
1: जी। तो हमने जो बात करी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसके तहत बच्चों को किस किस तरह की कानूनी संरक्षण उनको प्राप्त है, किस तरह की उनको चीजें कानून के तहत अधिकार है उनके पास कि अगर कुछ उनके साथ में कहीं गलत होता है या वो किसी गलत दिशा में जाते हैं तो उनको एक सुधार की गुंजाइश रहती है, तो इसके तहत आप हमें ये बताएं कि किस किस तरह के केंद्र चलाए जा रहे हैं, पुनर्वास केंद्र जिनको आप कहती हैं?
0: ये है मैडम बाल कल्याण योजना, इसके लिए चलाई जा रही है। किशोर न्याय है, किशोर न्याय बोर्ड है, इसमें पुनर्वास के लिए संपूर्ण सुविधा उपलब्ध रहती है बच्चों के पुनर्वास के लिए।
1: तो ये ग्रामीण स्तर पे हैं कि जिला स्तर पे हैं, किस तरह से हैं?
0: ये राष्ट्रीय और प्रत्येक जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाती है मैडम। प्रत्येक जिले में 1 या 2
1: पुनर्वास केंद्र होते
0: हाँ,
1: हैं जहाँ पर बच्चों को,
0: बच्चों के भरण पोषण या उसके
1: हाँ, जी, जी,
0: जो
1: जी,
0: बेघर बेसहारा है
1: हाँ, हाँ,
0: उनको सुधार किया जाता है,
1: उनका उनको सुधार कर एक सही दिशा उनको दी जाती है जी। तो मैडम इसके अलावा आपको और किस किस तरह की आप हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दे

0: सकती हैं इसी अधिनियम के तहत, कि अगर किसी बच्चे में या अगर किसी परिवार में किसी तरह का कोई समस्या आती है बच्चे के साथ में, तो वो क्या सुधार कर सकते हैं?
1: मैडम, इसमें आप पहले जाके आप यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड में आप अपना खुद आप एक आवेदन या फॉर्मेट दे सकते हैं।
0: जी
1: तो वहाँ पे जाके जरूरी जो जरूरत के जो बच्चे हैं उनको, जैसे माता पिता हैं वो अगर अच्छे से पाल पोष नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ जाके किशोर न्याय बोर्ड में वहाँ पे अपना आवेदन करके
0: जी
1: उनका अच्छा से भरण पोषण पुनर्वास किया जाता है।
0: जी कई बार बच्चों के पास पारिवारिक सुरक्षा नहीं रहती है इस तरह के बच्चों को मतलब अगर वो बच्चे मान के चलिए कि उनके पास में कोई पारिवारिक संरक्षण नहीं है, तो आयोग किस तरह से उन बच्चों को संरक्षित करता है?
1: आयोग इसमें स्वतः संज्ञान ले के जैसे कोई जानकारी दे तो उसमें स्वतः संज्ञान ले के वो अपना कार्यवाही कर सकता है।
0: जी जी तो श्रोताओं, आज आपने जाना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में, और इन विषयों पर आज हमसे बातचीत की अधिवक्ता सुश्री निशा गोडबोले ने।
1: जी
0: मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कानून की बात इस कार्यक्रम में अभी आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर दी गई जानकारी सुन रहे थे। जानकारी दे रही थी अधिवक्ता कुमारी निशा गोडबोले और इनसे बातचीत कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज जशपुर और सरगुजा जिले के विभिन्न गांवों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर बारूदी विस्फोट में शहीद हुए डीआरजी के चार जवानों को दी गई अंतिम सलामी। रायपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाइजीरिया से छत्तीसगढ़ लाया जाता था मादक पदार्थ। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार। बस्तर में तेज बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर और सरगुजा जिले के गांवों का आकस्मिक दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री जशपुर जिले के भैंसामुड़ा गांव के चंदगढ़ शासकीय स्कूल पहुंचे और क्रिकेट खेल रहे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से गांव की स्थिति और विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भैंसामुड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों का निरीक्षण किया। साथ ही चंदागढ़ में किराना दुकान चलाने वाली लखपति दीदी से मुलाकात कर मुद्रा योजना से मिले लाभ के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री सरगुजा जिले के सिलमा गांव में शांतिपारा बस्ती पहुंचे और चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई से सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई है जो 10 जून तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन की 100% आपूर्ति की जाए। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घर वालों ने खरीदारी करने से बचें और सरकार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित इस पोस्ट को भ्रामक बताया है, जिसमें कहा गया है कि कोयले की कमी के कारण भारत गंभीर बिजली संकट और ग्रिड फेल होने की स्थिति का सामना कर रहा है। सरकार ने इस पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि ऐसे दावे अनावश्यक घबराहट फैलाने का काम करते हैं। सरकार के अनुसार वर्तमान में तापी विद्युत संयंत्रों के पास 53 मिलियन टन से अधिक कोयला भंडार है, जो कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं महासमुंद जिले में एलपीजी गैस के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षित रखरखाव के लिए सुपुर्दनामे में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल से लगभग 90 मीट्रिक टन से अधिक गैस के गबन का खुलासा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक, निदेशक और प्लांट प्रबंधक ने कूट रचना कर गैस खाली की है। इस मामले की जाँच जारी है। बताया जाता है कि जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने बीते दिसंबर में एलपीजी गैस के 6 कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया था। गैस से भरे इन ट्रकों को सुरक्षित रखने के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के सुपुर्द किया गया था। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर कल बारूदी विस्फोट में शहीद हुए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 4 जवानों में से 3 जवानों को नारायणपुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। वहीं एक अन्य शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांकेर ले जाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी और जिला कलेक्टर नम्रता जैन के अलावा जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। बस्तर आईजी ने बताया कि माओवाद की समाप्ति के बाद अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए बारूद को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान यह घटना हुई। जैसी की खबर दी जा चुकी है, कल नारायणपुर और कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित अबूझमाड़ के मरकाबेड़ा के जंगलों में बारूद को निष्क्रिय करने के दौरान उसमें विस्फोट होने से 4 जवान शहीद हो गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों।

की ओर। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाइजीरिया से मादक पदार्थ छत्तीसगढ़ भेजा जाता था। तस्कर इसे ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन के डिब्बों में छिपाकर डिलीवरी करते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि यह खेप पहले दिल्ली पहुंचती थी, जिसके बाद इसे रायपुर सहित अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की है। मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर जांच की जा रही है। भिलाई नगर क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बुजुर्ग से 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार फेसबुक पर निवेश संबंधी फर्जी वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो के झांसे में आकर बुजुर्ग व्यक्ति ने लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया और फिर निवेश के नाम पर धीरे धीरे उस व्यक्ति से 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई। महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान कथित रूप से खुले आम नकल कराने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश रमेश सिन्हा और रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने इस मामले की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई के बारे में शपथ पत्र में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। एक जनहित याचिका के मुताबिक भंवरपुर की एक छात्रा ने 12वीं के पर्चे के दौरान स्टिंग ऑपरेशन कर यह आरोप लगाया था कि शिक्षक विद्यार्थियों को नकल करने में मदद कर रहे थे। राज्यपाल रमेन डेका ने आज धमतरी में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से जल संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, नशा मुक्ति अभियान और जनमन कार्यक्रम सहित नवाचारों पर चर्चा की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कवर्धा में भोरमदेव मंदिर के पास प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और जंगलों के बीच स्थित करिया आमा के क्षेत्र में जंगल सफारी विकसित की गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद संतोष पांडे ने आज इस परियोजना का लोकार्पण किया। करीब 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी का मार्ग तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के पास से ही है। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट का दौर शुरू होगा। इस बीच बस्तर में बीती रात मौसम ने अचानक करवट बदली और देर रात को गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। कल से देशभर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई दिल्ली में अग्नि सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। ये दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी आज का दिन है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज जशपुर और सरगुजा जिले के विभिन्न गांवों का आकस्मिक दौरा किया। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर बारूद विस्फोट में शहीद हुए डीआरजी के चार जवानों को दी गई अंतिम सलामी। रायपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाइजीरिया से छत्तीसगढ़ लाया जाता था मादक पदार्थ। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार। बस्तर में तेज बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार। आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनने में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म स्वर्ग से सुंदर से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी कारानी, गजेंद्र कुमार पार्थ और हेयांश चंदन, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर, मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तान्या नारंग, लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत और निशांत साहू, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर कौसर, रायपुर से मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पूड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदू, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, बाबा कुटीर रायगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान, उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना बेगम, फरदीन खान, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, अनुश्री और हमारे श्रोता हैं ये छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से अजीत बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति, ख्याति, जगदीश, सोनी, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, पूजा, आरजू, अभिषेक और योगेश, देवरी भाटा

पारा से गनूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, विभा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीखराम देवांगन, रेनू रजनी, प्रियंका देवांगन, यवतमाल महाराष्ट्र से सरला मनवर, राहुल, रोशनी, विशाल, चेतन और प्रियांशी मनवर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, बुड़गहन से हमारे श्रोता साथी हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन बोरगांवकर, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजपति, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर, दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु प्रकाश, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, पांडुरंग कुम्हार, प्रतीक्षमा और प्रथमेश, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीता, विंथेल नाचानी, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रणीता, सिद्धांत, एकांश गवाणकर, साथ में हैं नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर और इनके साथी, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसमा मोहम्मद कैफ अंसारी, बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई और संचित देशमुख, मोताला महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित बेबी गर्वी चौहान, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल मेहरा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, दयापुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले, हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण, तेल्हारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा सुजाता पोहारकर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला विशाल नवहानकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले और मंगला इंगले, गोगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान और अब्दुल गफ्फार खत्री, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुनेद मुजावर, सहबीहा जुनेब और इनके साथी हैं, बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल और नफीसा, घनश्याम मोदी, गोपाल, रमेश, मोहित और सक्षम मोदी, ये है जिला मंदसौर से, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म दाग का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग के आखिरी गीत के लिए ईमेल भेजने वाले श्रोता साथी हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, साथ में है मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू, उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी, सूरज और कुशल वर्मा, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, पलारी जिला बलौदा बाजार से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, रिहान, पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्री, ईशांत, तनुजा देवांगन, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण और चंपा साहू, गतौरा से बोधिराम, आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान और विजय, रायगढ़ से उमा, प्रवीण और प्रमिला सोनी, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, पलारी से है नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम, कृष्णा दिवांगन, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल शुभम और दुर्गेश्वरी जायसवाल, उदयपुर से गोपाल नैनवाया, कांता, विवेक, मनीष नैनवाया, प्रांजल और लक्षिता नैनवाया, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। श्रोताओं, लीजिए आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म कल की आवाज का ये गीत। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर की रचना और नदीम श्रवण का संगीत है।

और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम ग्राम सभा का। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी मनला जम्मो श्रोता मनला जित्तू भाई के राम राम औ प्रेम भड़े भरे जय जोहार। संगवारी हो, का हाल चाल है, कैसन हाँ? अब भाई देखा, जब गर्मी पोठ परत है त प्रभु के कृपा हो जाते कि वैसन है बादर पानी घलो गिरा देते। तो जैसन जब एति तापमान बढ़त है तो एति तापमान हाँ घटो जाते और हमन अपन काम बूता बर बिहाम जाय में आसानी हो जाते। तो भाई देखा, मनखे मन अब खेती किसानी में तो भाई जौन भी लगाए रहन है उन्हारी बारी तो जतना के रही से, अब गर्मी के जिन धान लगाए रहन है ओहू हा 10 दिन 15 दिन में कटे लायक हो जाही। जौन किसान मन तीर सिंचाई के व्यवस्था रही से उमन कुछ खेत में अपन 100% खेत में 15-20% में लगाए रहे थे, आय के साधन हो जाते, उखरो धान पान हा कट जाही। औ ग्रामीण अंचल में देखी चाहे शहरी अंचल में सब जी अपन अपन क्षेत्र अनुसार कुछ न कुछ रोजगार में लगे रही थे। वैसन है हमार जंगली क्षेत्र के बात करी, जौन किसान भाई मन जंगल तीर में रही थे उमन भी रोजगार बर जंगल ऊपर आश्रित रही थे। वैसन है तेंदू पत्ता के संग्रहण करके उमन रोजगार ला अपन चला थे। तेंदू पत्ता संग्रहण से छत्तीसगढ़ के लाखों वनवासी परिवार मनला प्रतिवर्ष सम्मानजनक आय मिलते। ये आय न केवल उखर परिवार के दैनिक आवश्यकता के पूर्ति करते बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में घलो सुधार करते। तेंदू पत्ता खरी के संगे संग वर्तमान में पत्ता मन के उपचार बोरा भराई और गोदाम में परिवहन के कार्य घलो शुरू हो चुके हैं। तो ऐसन में हमन कहबो के भाई जौन भी रोजगार लोगन ला मिलत है ओला करके अपन आय ला बढ़ाना चाहिए। तो संगवारी हो, एक संग आवा सुनथन ए संदेश मनला।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो संगवारी हो, लहुट के आगे हैं, फिर आप मन के स्वागत है। भाई बड़ खुशी के बात आए कि 1 मई 1991 में हमार आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना हो रही था। आज 2026 में हम 35वां स्थापना दिवस ला मनाथन। और एक बात बताओ कि भाई आकाशवाणी के 90 बछर ला घलव हमन पूरा करथन अवैया 1-2 महीना में। ए प्रकार ले हमर आकाशवाणी 35 वर्ष के सफर ला पूरा करे हवे, जेमा हमर श्रोता मन के योगदान घलव बने हवे। आवा ही अवसर में ए विशेष कार्यक्रम सुने ला सुनथन। हाँ तो भाई महंगू भैया, आप ओ दौर ला देखे है जब आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना हो रही से, और का आप मनला सुरता हावे, कौन कौन श्रोता मनला आप जोरत हो लेवा कार्यक्रम में आगो बढ़ा।
2: आकाशवाणी के 90 बछर पूरा हुए माँ और आकाशवाणी बिलासपुर के 35 बछर पूरा हुए माँ, आज अगर देखे जाए तो ऐसन समय में सबको मन के ये आकाशवाणी ले आवाज प्रसारित हुई और सब सुन के आज भी वो याद ना ताजा रखी हमें। आज ऐसा समय में हम सुरता करथन जोन बीते समय हमें, और वही याद माँ जुन्ना हमार जो नियमित उद्घोषक रहीन उनला। सौभाग्य के बात है आज हमार बीच में श्री हरिश्चंद वादेकार जी मन उपस्थित हमें और अपन याद ला बतात हुए कि कैसे आकाशवाणी बिलासपुर की शुरुआत हुई और कैसे ढंग ले ओमन कार्यक्रम ला प्रसारित करें। हमार श्रोता मल्ला खास करके किसान मल्ला का लाभ हुई, आवो उनकर जुबानी उनकर कहानी सुन ले जाए। तो सबले पहले श्री हरिश्चंद वादेकार जी, आप मन के स्वागत हो, आप मल्ला राम राम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद राम राम, और ये मौका में आप मल्ला याद करे मोर लिए एक बड़े खुशी की बात कुछ भी हो सके। आकाशवाणी की शुरुआत जब मुला ऑर्डर मिली कि आकाशवाणी बिलासपुर केंद्र के सेवा किए जाए, तो ये मोर सौभाग्य कि आकाशवाणी बिलासपुर महा सेवा करने का मौका मिले। और दूसरा कारण ये भी रही कि मैं ही जिला के रहे हूँ, यहाँ के गांव-गांव से परिचित रहे हूँ, यहाँ के खेत खलिहान से परिचित रहे हूँ, यहाँ के खान पान से परिचित रहे हूँ, यहाँ के लोगों से परिचित रहे हूँ, यहाँ के लोगों से के प्रवृत्ति से परिचित रहे हूँ। और ओकर बाद आकाशवाणी शुरू हुए पहले ही विमर्शा वही की आकाशवाणी बहुत काफी लोकप्रिय बनाना है, किसान के माध्यम से हो, लेखक के माध्यम से हो, कवि के माध्यम से हो, और सबसे बड़ी बात कलाकार के माध्यम से हो, ताकि इन सबके बहुत बड़े योगदान रहे थे आकाशवाणी ला आगे बढ़ाए। वहाँ तो जावन गांव का जावन शुरुआत में गांव जहाँ प्रतिभा खोजन
2: जी,
3: कलाकार खोजन
2: जी,
3: और अच्छा बड़े किसान खोजन
2: जी,
3: पढ़े लिखे किसान खोजन, उनका से बातचीत करन कि उनका पढ़े लिखे के बाद किसानी जो होते उमा का फायदा होते, और अनपढ़ या फिर अनुभवहीन जो किसान होते हैं उनका किसानी में का फर्क पड़ते।
2: यही बात में हमला आज भी सुरता है, हालांकि कहे जाए तो 35 बछर बीत गए, ऐसे लगते आजे कल की बात है। आप इसी क्रम में हमार गनियारी ग्राम पंचायत में आए रहे हो।
3: बिल्कुल याद है मुला, गनियारी आ रहे हो, मैं गनियारी आ रहे हो।
2: नीम के कहे जाए पेड़ रही से पौधा रही सो समय, आज तो पेड़ हो गए है, और वही मेरे आपकी गाड़ी रुकी और आप कलाकार के प्रचार प्रसार में निकले रहा। हमारे यहाँ अनिल गुप्ता है, जिन अनिल रेडियोज के नाम से दुकान वही समय करा।

0: थे, तो वो बहुत बढ़िया उनके हम गोदाम में गए, फिर आपसे मुलाकात हुई सब बढ़िया ढंग से। मैं उस समय छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम लोक पार्टी चला रहे हूँ और बुलाए गए इसके आसपास में अगर कोई कलाकार है तो कलाकार में कोटा गनियारी सब में कम से कम थोड़ा सा वो रही से, तो मुला बुलाए गए जब गए तो फिर आपसे मुलाकात हुई। आप बड़ा सुंदर दिखा रहा उस समय और आज भी सुंदर हो। सर याद है कि आप छोटे कद आपके अब बहुत बढ़िया सुंदर देखा था और आवाज आपकी इतना बढ़िया रही कि हम वो दिन प्रभावित हुए। अच्छा सुंदर आवाज और रेडियो अगर शुरू हुई तो हमला कैसे ढंग से क्या करना है, सुनना है कैसे सुनना है, कामा सुनना है कामा सुनाई दही, फिर उकर बाद में
1: धन्यवाद आपके।
0: सबसे बड़े फायदा एक चौका हुई हमला आकाशवाणी पर कि सुनना कैसे है तो आप बताया, तो वो समय टेप रही से देख रही से और जुमना रेडियो रहे जेमा आपके रायपुर सुनाई देवे मीडियम वेग और 60 वेग जो रहे थे वो सुनाई देते रही थे, लेकिन FM पर कैसे करबो तो रिसीवर छोट का नान का वो समय आवे तो रिसीवर लवला जोड़े जावे, तो हमारे रेडियो बनाने वाला वो रही चैनल गुप्ता जो नहीं तो हमने जो भी नया नया लावे तो वाला बिचारा हुआ बढ़िया वो तो रिसीवर लगा दे तो मैं सुनाई देना शुरू हो जावे, तो बड़ा बढ़िया उस समय से एक फायदा और हुई आकाशवाणी पर कि वो बेचारा वो रेडियो बढ़िया पुराना रेडियो नया ढंग से ये रिसीवर ला जोड़ दे भाई। तो बहुत दिन तक तो हमन वो रिसीवर के माध्यम से ही आकाशवाणी ले सुने। आपसे जानना ये चाहबो कि आपके शुरुआती दौर कैसे ढंग से हुई और आप हमारे ग्राम सभा किसानवाड़ी पर का ऐसा प्रसारण में सहयोग रहे हैं आज तक के, आपके आवाज ऐसे डंका बजे है एक समय में आप एक छत्र राज करे हा, यह बात हमला बिल्कुल श्रोता मन के द्वारा पता चलते बतावा।
1: नहीं कावर की मैं ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत दिन तक करे हूँ, शुरुआती दौर में जब कंपेयर्स मन की नियुक्ति नहीं हो पाई रही तो आकाशवाणी में इकलौता मैं रहे हूँ जिन्हें छत्तीसगढ़ी जानत रहे हूँ,
0: बहुत बढ़िया
1: छत्तीसगढ़ी बोलत रहे हूँ, छत्तीसगढ़ी समझत रहे हूँ और छत्तीसगढ़ी में दूसरा से बातचीत भी कर लेते हैं, तो वो समय आकाशवाणी के जो कार्यक्रम के समय रही शायद 20 मिनट या 30 मिनट के रही सोई ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम वहाँ, तो मैं यहाँ पूरा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ सुबह अनाउंसमेंट के साथ साथ ही बीच में ग्राम सभा और किसान वाणी कार्यक्रम आए, तो मैं छत्तीसगढ़ी का बहुत दिन तक कर रहे मैं और वो कार्यक्रम के माध्यम से मैं किसान भाई मन से मिला हूँ, उनका मन से जानकारी ला हूँ, वो एक्चुअली मैं किसान भाई मन से मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान भाई मन से रेडियो में बातचीत कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी में, बोले इंटरव्यू नहीं कहे जा सके बातचीत कहे जा सके, तो मैं ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत दिन तक कर रहे हूँ, विशेष कार्यक्रम भी कर रहे हूँ और स्पेशल कार्यक्रम भी कर रहे हूँ, जब भी इसे कुछ बात बाबा कह रहे वो किसान वाले में जाना है तो मैं वो कार्यक्रम मैं कर रहे हूँ, वो किए हुए कार्यक्रम बड़ा श्रोता मन बड़ा पसंद कर रहे।
0: हमारे बीच में वादिकार जी जुड़े हमें अपन पुराना जुन्ना याद ला ताजा करत हमें, हम इसी क्रम में सबके आप साक्षात्कार लेते रहा कहे जाए और कहे जाए तो बातचीत करत रहो, आज सौभाग्य के बात है आज हम अपन सब बातचीत करत हम साक्षात्कार करत हम आपसे तो कोई बात पूछी नहीं जा सके, पर फिर भी ये आप जैसे आकाशवाणी बिलासपुर में ग्राम सभा किसानवाड़ी में कार्यक्रम जैसे करत रहे हो तो कैसे ढंग से आप मन से श्रोता जुड़त रही है कहा रही से वो समय के माहौल है और आज कैसा लगता है आपला आकाशवाणी के ग्राम सभा किसानवाड़ी कार्यक्रम।
1: अरे किसानवाड़ी कार्यक्रम जिस मन में करत रहे गोपाल भाई, किसान मन के जो उत्साह रहे किसान मन जो रेडियो सुने के बाद जो प्रतिक्रिया भेजे वो प्रतिक्रिया के तारीफ के लिए जितना भी कही हो कम शब्द हो जाए, अरे इतना तल्लीनता से सुने ध्यान से सुने एकदम, तो क्या है कि समझ में आवे कि वाकई में हमारा आकाशवाणी से जो प्रसारित हुआ थे वो किसान भाई मन से कितना लाभकारी हुआ थे। एक अलावा किसान वाणी में जिस संगीत के लिए गांव के कलाकार मन मिले ना तो गांव के कलाकार मिले उनकी रिकॉर्डिंग करी उनका प्रसारण भी करी, किस्सा गांव के तहत गांव और जावन पूरा गांव के किसान कलाकार गायक इन सब प्रस्तुति करवान रिकॉर्ड करवान गीत

जी सब लोग वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं, ऐसे लगे जैसे वो गांव है हमारे रेडियो मांग गया ओखर जो सौंदर्य रही ओखर प्रस्तुति रही वो अद्भुत रहे। आधा घंटा के कार्यक्रम रहती आधा घंटा के कार्यक्रम रहती कि 40 मिनट के कार्यक्रम रहती, लेकिन ऐसे लगे कि पूरा गांव है रेडियो और रेडियो में है, पूरा गांव के लोग रेडियो में बैठे हैं, सब तो अपन अपन बात करते हैं अपन अपन सुनाई करते, तो ऐसे करके ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत बहुत फेमस हुई। ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत फेमस हुई, ग्राम सभा कार्यक्रम में जो कृषि वैज्ञानिक मन आई वो वैज्ञानिक मन इतना सुंदर जानकारी के किसान भाई मन लगे के उनला एक एक बात समझ में आ जाए, और किसान भाई मन ऐसे बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा नहीं किसान भाई मन की भाषा में बात करें और उसमें जानकारी देवती है, और किसान वाणी वो सब बड़ा लोकप्रिय रही और किसान वाणी आज भी लोकप्रिय है। किसान भाई मन ना अपन खेत भी जाते ना तब बोले अब तो नहीं की सको, लेकिन एक जमाना रही जब किसान भाई तालाब जावा थे खेत जावा थे मुखारी तोड़े जावा थे तो उनका कंधा मार रेडियो लटके रहे।

0: बहुत दिन तक आप आकाशवाणी बिलासपुर ले जुड़े रहे हो, जहाँ तक पद के नियुक्ति आकाशवाणी में हुई और आप सेवानिवृत्त भी आकाशवाणी बिलासपुर ले हुए हो। तो ये बीच में कोई रोचक घटना आप लोग को सुरता तो ही आपके याद में हुई तो कुछ ऐसा बताओ आप।
1: बहुत अकन गोपाल भाई इतना बढ़िया है, सबसे बड़े हुए है कि तुम्हार मन से मुलाकात हुआ, रोज भेंट हुआ, रोज अच्छे अच्छा बात हुआ। एकर अलावा गांव में जान तो गांव के जो किसान भाई हैं, जो गांव के लोग बिल्कुल आकाशवाणी तो कन्नम उठा देते तो हैं। जैसे आकाशवाणी की टीम पहुंचे कन्नम उठा ले। अब पूरा प्रोग्राम के करत लेना तो अच्छा, तो इसे करके है
0: कोई रोचक घटना बताइए ना, कोई रोचक घटना कोई याद में आती हो तो बढ़िया सा, कुछ भी इतने वर्षों में कुछ तो होगा।
1: एक रोचक घटना बता दी मैं हूँ, एक श्रोता ही श्रोता के नाम नहीं बताऊं, लेकिन वो हर आए सतर गेट में रोक भी मेरा कार की 6-7 बजे शाम की आई आकाशवाणी में बिना एंट्री करे बिना समय में जाएगा सकते देश में नहीं जाएगा सके
0: जी।
1: ये वहाँ का आकाशवाणी के नियम है, लेकिन वो श्रोता एकदम मर के नहीं मैं मुलाकात करके जाऊँ, चाहे 11 बज जाए उनका से मुलाकात करे बिना जाऊँ नहीं, मैं अक्का दुनिया आया हूँ इतना दुनिया में आया हूँ ये वो है। उस समय फोन इन कार्यक्रम चले, मैं फोन इन कार्यक्रम बहुत दिन तक कर रहा हूँ, तो वो फोन कर रहे और फोन ना लगाए, वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। थोड़ा आयो रेडियो छोड़ के स्टूडियो से बाहर आये और देखे तो पूरा बताई, वो एकदम द्रवित होकर थी और मुझे देख के कहते कि सर आप ही हैं, बोला हाँ, अरे आप ऐसे होंगे करके नहीं सोचा था सर, मैं बोले मेरे बारे में सोचा मत किया करो, नहीं तो क्या है कि रात को बुरे बुरे सपने आते हैं मेरे मैं बोले चेहरा देख रहे हो सुरदरा चेहरा है, बोले नहीं सर ये कोई बात नहीं, सिर्फ कोई बात नहीं है मेरी, मैं आ गया और ये बात करके आया हूँ तुम्हारा, ठीक है जाओ मुलाकात हो गई, अब फिर से फोन करना उसके बाद तुम्हारा फोन शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब रेडियो में तुम्हारा नाम शामिल ही करेंगे तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमारे ढेर सारे श्रोता होते हैं जो अपनी बारी का इंतजार

0: रहे। तो यही बात गोपाल भाई, लेकिन कहा है कि और कोई से कोई नहीं याद।
1: एक बात और है कि आकाशवाणी के नाम सुनते साथ अच्छा अच्छा बोलैया के बोलती है बंद हो जाए, एक चीज और और जो नहीं बोले तेनो आप बुलाएगा, ये कैसन ढंग से होते थोड़ा सा?
0: ये बड़ा गोपनीय बात है लेकिन मैं बता देता हूँ। ऐसा बात पूछ दिए मैं क्या बताऊं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया चल बातचीत शुरू करा था और ओकर बाद ना जब थोड़ा थोड़ा हिम्मत हो जी ना
1: जी,
0: ओकर बाद तो से मैं कहे की रिकॉर्डिंग करना शुरू करा इसे कहे ना तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर। तो मैं ओकर से बातचीत जब शुरू करो ना तो एटी बगल मशीन चालू कर दे रहा हूँ मत देखे पाए, मशीन चालू कर दे रहा हूँ, मशीन चालू करे के बाद ओकर संग बात कर रहा हूँ। तो जब वो ये जाने की रिकॉर्डिंग नहीं हुआ बहुत बढ़िया बोला है और वादेदार बोला है, कोई कहीं नहीं अटक नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निर्भीक होकर रेडियो में बोला है। और ओकर बाद ना फिर मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो से हमारे मुलाकात हुई करके मैं यहाँ धीरे से मशीन बंद करता हूँ। फिर वो कहे ये मैं थोड़ा हाथ में पानी पी के बाद रिकॉर्ड कर दो, मैं कह रिकॉर्डिंग होगी रिकॉर्डिंग
1: जी।
0: अब तो दोबारा रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है
1: जी जी जी।
0: हाँ कैसे हो गए ऐसे हो तो बड़ा आश्चर्य हुआ
1: जी जी
0: की अत्यकन बात मैं कर गया हूँ रिकॉर्डिंग हो गई की थे, बड़ा मुश्किल है
1: जी।
0: अब कोई मुश्किल नहीं है
1: जी।
0: अब कहा करे हम लोग ये सब काम करे पड़ते करके ना उन्हें मैं बुलवा लेते रहे
1: बढ़िया बढ़िया
0: रिकॉर्डिंग कर लेते
1: बढ़िया।
0: और मैं हमेशा यही मैं कहता हूँ कि जो भी वहाँ प्रस्तुत करता है जो भी कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करते हैं हौसला हमेशा बुलंद रहना चाहिए। तो कभी भी हुए कोई भी वक्त हो जिस प्रोग्राम को करने के लिए यदि बोल दिया जाए वो कार्यक्रम करे बर सब तैयार हुए हैं ऐसे में।
1: आखिर माँ शुभकामना हमर जतका भी श्रोता संगवारी है किसान भाई बहनी मन है सब लाभ एक बार बढ़िया से शुभकामना दे देता आशीर्वचन से।
0: मैं रेडियो सुनो रेडियो हमेशा देते रेडियो हमेशा देते रेडियो लेवे नहीं और रेडियो ज्ञान के भंडार है इला सुने माँ कोई वक्त भी खराब नहीं हुआ है। रेडियो बेचारे एक जगह बैठे रही थे और अपन बात करते रही थे तो आप जैसे अभी तक लगन से रेडियो से जुड़े हो उसमें जुड़े रहो भविष्य में और यहाँ के जो रेडियो है थोड़ा और ज्यादा लोकप्रिय बनाओ कर्णप्रिय बनाओ मुझे यही शुभकामना है। और आप सब स्थापना दिवस के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना।
1: ए बीच में जुड़त हवे ग्राम गनियारी ले अनिल गुप्ता जी मन जौन रेडियो श्रोता अमर संगवारी हवे ओमन अपन जुबानी अपन कहानी बताही जुन्ना याद दासला। तो सबले पहले तो अनिल गुप्ता जी अपना राम राम
2: राम राम हो मंगू भैया जय राम जय राम।
1: ऐसा श्रोता है मन इनकर अनिल गुप्ता के जगह में अनिल रेडियो के नाम ले प्रसिद्ध हो गयी कावर की शुरुआत में ही जब आकाशवाणी बिलासपुर की शुरुआत मतलब होने रही से 91 के पहले ही सर्वे में प्रसार प्रसार खातिर आकाशवाणी बिलासपुर ले गनियारी ग्राम पंचायत में सबले पहली वादेकार जी मन गयी भेंट हुई इनकर मनसो और ये वो बात ला रखा हमें बतात हमें का हो रही सब।
2: हाँ तो आप मन तो पहली गाना गाना बधाई आकाशवाणी बिलासपुर के 35वां स्थापना दिवस के बहुत पुराना बात याद ताजा हो रहे है अमर मन के ये बिलासपुर स्टेशन यहाँ आकाशवाणी चालू नहीं हो रही थे फिर स्थापना नहीं हो रही थे मानक बात याद आ गई से हमारे वहाँ कर दी रही ने कि मन हमारा आ रही ने सर्वे भर यहाँ कैसे कैसे कहा है एक जानकारी लिए भर तो उकर से मुलाकात हो रही थे। तो वो जमाना में टेप रिकॉर्ड चले तो उसमें कहा है हमन जनरली कह जाए आकाशवाणी रायपुर ही ला जाना रहे और सिलोन वगैरह जो वही से मन समझत रहे तो वही समय बिलासपुर स्टेशन के अपन FM ओकर भी स्थापना हो के रही से तो पाटेकर जी मन आईन हमारे को इंटरव्यू लीन और इकरे समय पहली ये जो बन बिलासपुर स्टेशन जो अपन जिला हमन कह दनाथ के नाम आकाशवाणी बिलासपुर FM के नाम से जैसे जानता हमन इकर लिए तो पहली रिसीवर आवा है जिला हमन यही कोनो भी रेडियो पे टेमा लगावन और बड़ा चाव से वो सुनन हमारे

0: बिलासपुर के नाम आवा है उमा प्रसारण हो तो बड़ा आनंद आवे है। बोला हमन खुद भी कई ठो रेडियो टेप मा लगाए हैं, इंस्टॉल करे हैं, बड़ा आनंद आत रही से।
1: ये बहाने ले अपन बहुत जन रेडियो श्रोता बनाए हैं कहे जाए।
0: हाँ तो वो समय तो यही चीज रही थी, डायरेक्ट एफएम कोई ऐसे कुछ चले की व्यवस्था रही नहीं है। तो एक छोटा सा किट आवे जो ला हमन लगावन रेडियो मा टेप रिकॉर्ड मा और बहुत सारे जो भी ऑडियो सिस्टम में लगावत है और ये सब चीज आप मन के भी सोचन में काफी रही से क्योंकि आप खुद एरिया के हमारे बहुत अच्छा उस समय के जाने माने कलाकार रहा, आज भी आवाज से बात नहीं है बदरिया उस समय हिट हो रही थे बहुत बढ़िया गाले गाड़ी वाला है जाना है गनियारी बोला गाँव रे बड़ा बहुत प्रचलित रही थे गाना और काफी आप मन के सहयोग रही से कह जाए बिलासपुर स्टेशन की जब स्थापना हुई तब आप जुड़ा और आप आज भाई बहुत चर्चित नाम महंगू भैया के नाम से जाने जाते और हमारे बिलासपुर स्टेशन से तो जुड़े चंद करते तो अब तो बहुत ढेर सारे एफएम प्रसारित हो लगे हमारे बिलासपुर एरिया ले तो एक बहुत बड़े अच्छा यादगार है। उसमें कहा है अपन यही इंस्टीट्यूट के अपन अपन ट्रेनिंग लेते हैं और उस समय सरकार के एक बहुत बढ़िया योजना चले है शिक्षित बेरोजगार करके तो जमा एक छोटा सा राशि जो है दिए जावे माने कह जाए लोन के रूप में तो उसमें मैं वो भी ले रहे हैं तो जेकर बारे में जानकारी पाटिकर जीवन एक बारे में ले रही ने और आनंद आ रही तुम कर दो इंटरव्यू दे के पति जन के बहुत आनंद आई आप मन से बात होके कि आज पुराना याद फिर ताजा हो गए आज 35 साल बाद कहे जाए आज हमका फिर वही इंटरव्यू दे के सौभाग्य प्राप्त हुई थी आप मन का तो एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और जबका हमारे रेडियो श्रोता संघ के जम्मो भाई बहनी मन भी जय जोहार और गाड़ा गाड़ा बधाई स्थापना दिवस।
2: हाँ भैया मैं आकाशवाणी बिलासपुर एक मई के हार्दिक बधाई देवत हवा
3: आप चुनना कुछ याद हो ही शुरुआती दौर ला बतावा ना कैसे कैसे।
2: हाँ पहली कार्यक्रम भैया एक मई के स्थापना दिवस होमा यानी के कार्यक्रम समय अभी भी चला जिसे बात नहीं है ये सभी कार्यक्रम चलते माटी के स्वर कलक होमा शीर्षक सामान दिए जाते हैं और शीर्षक सामान ला सुना न सुन के फिर शीर्षक लिख के डालत रहे हैं वो आत रही से और कार्यक्रम में खेती किसानी संबंधी ग्राम सभा के चलत है हाथ से चलत हवा वहाँ ये सब कार्यक्रम है बढ़िया अच्छा है। किसान वाणी तो भैया खेती किसानी बारे में तो एक नंबर है काबर पशुधन ले जो भी समस्या है उसके बारे में निवारण करते खेती किसानी के बारे में निवारण करते ये सब कार्यक्रम है तेना बड़े किसान मनोबल में लाभदायक है भैया कार्यक्रम है। हाँ हमला कैसे लगते बिलासपुर सुनते रहा लेकर से लाभ हम लेखन तक कोई से बात नहीं सुनन भर नहीं लेखन लाभ भी लेखन हम तो बहुत अच्छा लगते ये कार्यक्रम है तेना आप मन के बिलासपुर के कार्यक्रम है
3: आप शुरू में सुना था शुरुआती दौर ला बतावो ना।
2: हाँ सावन कंडीशन लगाए रहे उस समय हाँ छोटी सी जिला है पहले तो मिलते नहीं कह रहे थे आकाशवाणी बिलासपुर के एक नहीं मिलते बाद में फिर ऐसे लगा के फिर रेडियो लगवा तो फिर उच्चारी हुई। हाँ
3: आपके श्रोता संघ घला बने हैं वहाँ कौन कौन है
2: ये श्रोता संघ भैया हमारे धनुमंच में आवा है वैसे हमारे बहुत जन श्रोता यहाँ के बलौदा वाला जुड़े हवा है रवासी वाला भाई मन जुड़े है बहुत जन श्रोता संघ में जुड़े हवा है तो श्रोता संघ हमारा ये बना रहे भैया हाँ तिवाले रेडियो श्रोता संघ इसे बना रहे हैं।
3: अच्छा कतक जन रहे हो तुम श्रोता कतक जन रही हो जुड़े
2: वो समय बहुत जरूरी भैया इसे 40-50 जन से श्रोता मर रही सब है जुड़े के समय बहुत श्रोता रही थे। नाम बताओ का भैया
3: हाँ बताओ ना कुछ श्रोता मन के नाम
2: आप श्रोता है अफगनी हवा है बचकमल भैया मन है और मोतीलाल है और यदि नारायण यदि जी है ये मारा परा वाले आर सी खबड़े जी है गुरु वाला उनके बहुत घर के नाम यानी के और पहली चलत रही सारा खत्म हो गए होगा वो समय सुभाष कपूर है ये मतलब जुड़े रही से मन में ऐसे जुड़े रही भाई मस्त खाली श्रोता सम्मेलन तको करे करे आकाशवाणी में रायपुर में तको करे करे हैं।
3: अच्छा
2: श्रोता सम्मेलन यानी के 2 अक्टूबर के श्रोता सम्मेलन पूरा जो के आप मोर ख्याल से 12-13 तो हो गए हुई है श्रोता सम्मेलन मैं ये कही की आकाशवाणी बिलासपुर ला अपन हृदय से बधाई देवत हूँ ऐसे कार्यक्रम में चलत रहा है ऐसे जीवन भर चलत रहा है भैया ये शुभकामना देवत हूँ आकाशवाणी बिलासपुर ला धन्यवाद।
3: तो अभी गोठियाएन हमन दतरेंगी भाटा पारा ले विश्राम यदु जी मन से अभी जुड़त हमारे बीच में दन्नू लाल रजक मन देवरी भाटा पारा ले गन्नू रंजक जी।

0: बोला था आप।
1: हाओ
0: आप मन के स्वागत है भाई। राम राम भैया।
1: राम राम भैया। राम राम। मैं आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस में मैं पूरा आकाशवाणी परिवार जब श्रोता मन ला हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ भैया।
0: हाँ, आप मन के शुरुआती दौर कैसे हुई, कब ले सुना था?
1: मैं भैया जब आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना हुई ना 1 मई 1999 के तब से मैं ना शुरुआत से ही मैं आकाशवाणी बिलासपुर रेगुलर में सुना था। अभी तक के किसान वाणी हवा माटी स्वर है, आप मन की गीत है और अमराई हवा लोकगीत है और किसान वाणी है, जितका भी अब फोनिंग कार्यक्रम आवत है वो सब ला मैं सुनता हूँ। तुम्हार गोट हमार गीत है, हेलो आपकी पसंद सब ला। ग्राम सभा में तो विशेष रूप से भी है, हेलो किसान वाणी, किसान से संबंधित जितका भी हमारे समस्या के समाधान हम अच्छा ढंग से मिलते भी हम भाग लेते लगातार।
0: शुरुआती का अनुभव है आपके?
1: ये अनुभव भैया हम अभी तक की बिलासपुर आकाशवाणी सुनत आवत हैं। पहले चिट्ठी के द्वारा हम है ना चिट्ठी लिख के अपन खेती किसानी संबंधी से हम गोट बात लगे कारण थे हम फोन के माध्यम से जानकारी हमला मिल जाओ भैया तुरंत मिल जाओ थे। डिजिटल युग आगे हमला अच्छा जानकारी मिल जाओ थे तुरते हमला।
0: अच्छा बढ़िया सुनाई देते?
1: हाँ हमला बढ़िया सुनाई देते, लेकिन अभी कुछ समय से ना अभी रेडियो के माध्यम सुनाई नहीं देते, मोबाइल में ही सुनत हम।
0: अच्छा और कुछ अपन संघ भाग के बारे में बतावा, कब संघ बनाया, रेडियो श्रोता संघ का नाम है हमार के संघ के?
1: हमारे रेडियो श्रोता संघ के ना मधुर संगीत रेडियो श्रोता संघ के नाम से चलते है, जेमा मैं देवरी भाटा पारा से गन्नू लाल रजक और साथ में के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री आकाशवाणी बिलासपुर सबो कार्यक्रम हमारे निमित्त सुना था अभी तक के।
0: कब बना रहा संगला श्रोता संगला?
1: हम ये श्रोता संगला भी है हमारे तो 1990 के बने हवा है हमारे श्रोता के संघ के ना, लेकिन आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना हुई ना वो समय से हम यू पूरा हमारे संघ के जुड़ गए समाज।
0: अच्छा अच्छा और कुछ कहना चाहत हुआ बतावा?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी बिलासपुर के जेने प्रसारण हवा तेना अभी रेडियो माध्यम से अभी प्रसारण स्पष्ट नहीं आ पाओ तो सुधार की जरूरत है, मोबाइल में तो अच्छा हुआ थे।
0: आप तो बहुत बढ़िया पुराना जुन्ना हमारे श्रोता हो है ना भाई?
1: हाँ भैया।
0: और आप उनके चिट्ठी पत्र घला आत्र थे लगातार?
1: हाँ हाँ।
0: और कुछ कुछ कार्यक्रम में फोनिंग कार्यक्रम हुई तब में आप जुड़े रहते हो
1: और हाँ भैया
0: आप कैसे सहयोग रही और आप सुनत रहिए हमारे कार्यक्रम ला है ना भाई?
1: हाँ आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना दिवस में हार्दिक बधाई और शुभकामना पूरा आकाशवाणी पर सब श्रोता जम्मू भाई बनला।
0: चलो धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: रोहासी ले डगेश्वर राम साहू स्थापना दिवस के अवसर में शुभकामना देते हुए
3: आकाशवाणी बिलासपुर गाड़ा गाड़ा बधाई आ रहा भैया।
0: सिंगारवाड़ी घुटकू ले हमारे एक और श्रोता संगवारी जो उनकी बड़ा जुन्ना श्रोता संगवारी है भगत राम पटेल जी मन जुड़त हमें एमन श्रोता के अलावा एक बहुत बढ़िया किसान घला है जो उनकी हमेशा किसानी के गोट बात किसानी के समस्या ला लेके हमारे कार्यक्रम ले जुड़ते हैं। तो भैया राम राम।
3: राम राम भैया।
0: भगत राम पटेल जी ये बताया कि आप कब ले रेडियो ले जुड़े हो बता?
3: मैं हाँ मांगू भैया आकाशवाणी जिन पहले रायपुर रही सवाए तो आकाशवाणी रायपुर के जब प्रसारण हुई तो उस समय जिन बिसाहू बरसाती भैया किशन गंगली मिर्जा मसूद जीवन जी रहे तो उखर मन की जिन आवाज है हम तक जब पहुंचे तो और सुंदर सुंदर जिन उस समय गीत की प्रसारण हो तो मैं हर छोटे से ही उम्र हुआ 12-14 साल के ही उम्र से मैं आकाशवाणी रायपुर से जुड़े और इस तरह से जुड़े कि जब आकाशवाणी बिलासपुर चालू हुई 91 में तो वो जिन रस है वो हमका आकाशवाणी बिलासपुर से मिले लगी और बिलासपुर से ऐसे जुड़े कि आज वहाँ से प्रसारित कार्यक्रम का सुन के और समझ के और सुंदर अपन रास्ता अपन जीवन ला धन्य कर डाले।
0: मई 91 में कहे जाए है ना आकाशवाणी की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर के कुछ ऐसे ध्यान है क्या बतावा?
3: भैया जब आकाशवाणी बिलासपुर शुरू हुई तो जिन वहाँ के प्रसारण के जिन क्वालिटी जिन शुरू से बने हैं आज तक के बने हैं, दूसरा चीज हमारे जिन भी कंपियर साथी आई जिखर बन के कार्यक्रम जब शुरू हुई तो हम तो कहन की पता नहीं कार्यक्रम में कौन टाइप के प्रसारण करी हम कौन टाइप के ग्रहण करबो, लेकिन इतना बढ़िया प्रसारण चालू हुई कि जिन सबो कार्यक्रम चाहे वो बहनी मन खातिर हो चाहे भाई मन खातिर हो चाहे किसान मन खातिर हो इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर शुरू से ही कार्यक्रम परोसी कि आज हम आकाशवाणी के एकदम बिल्कुल ऐसे चहेता बन गए हैं कि जेकर सुने बिना हमारे मन जिन है नहीं मार है।
0: भगत राम पटेल जी आप किसान घला हो है ना श्रोता घला हो तो दोनों में कैसे ढंग से सोचो?
3: गुरुदेव हमन का ये पता है कि जिन आकाशवाणी के पहले जिन हम दूरदर्शन देखन तो दूरदर्शन देखन तो हम कैसे लगे कि दूरदर्शन देखे खातिर हमला घर में आयल पड़त है बैठेल पड़त है और जब आकाशवाणी चालू हुई तो आकाशवाणी की जिन रेडियो के प्रसारण है वो हर जैसे भी हो जिन जगह जाए हम सुन के ओकर लाभ ले सकत हन और ओकर बाद जब हम किसान के जिन लिए कार्यक्रम प्रस्तुत हुई तो हमका जिन किसानी के रद्दा जिन प्राप्त होइ तो हम लगे में दू टी फायदा होइ। एक तो कार्यक्रम का सुन के जिन गीत भजन है और जिन बहुत सारे कार्यक्रम है आकाशवाणी के माध्यम से ओला सुन के तो हम

0: अच्छा लगबो करी, लेकिन जिन किसान की एक अलग प्रारूप हुई जेकर प्रारूप से आज हमार जिन किसानी है वो संवर गए और इतना सुंदर सुंदर बढ़िया ओकर प्रसारण हुई से कि आज हमार जिन खेती की लाइन है वो बड़ा सुंदर हो गए।
1: जेकर मतलब है कि आपका फायदा हो है
0: बिल्कुल मांगू भैया, एक एमा कोई कहे की बात नहीं है कि आकाशवाणी के जिन किसान के जिन कार्यक्रम है वहाँ हमला बड़ा फायदा हुई से और आज हमला अच्छा अच्छा जिन ज्ञान मिला थे वो किसान वाणी के ही माध्यम से मिला थे। तो मैं अब कहना चाहिए कि जैसे हमारे बिलासपुर आकाशवाणी आज हमका सुंदर सुंदर कार्यक्रम परोसा थे और हमारे जितना श्रोता भाई बंधु है जे मना इकर से जुड़ के अपन जिन प्रतिक्रिया भेजते तो आकाशवाणी के माध्यम से जिन मिलते तो मिलवे करते हमला संगी साथी मन से घलो एक दूसर से प्रतिक्रिया मिलते तो एक प्रतिक्रिया ला आदान प्रदान करे खातिर और सुंदर जिन स्थापना दिवस है आकाशवाणी बिलासपुर के तो मैं गाढ़ा गाढ़ा अपन पटेल परिवार की ओर से संगी साथी की ओर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई भेजना चाहिए आकाशवाणी बिलासपुर जिन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी कार्यक्रम सुंदर बढ़िया प्रस्तुत करे और एक अच्छा स्थान प्राप्त करके बढ़िया जिन कार्यक्रम है हम सब संगी साथी मतलब परोसे यही शुभकामना है। जय जोहार, राम राम,
1: धन्यवाद।
2: संगवारी हो आखिर मां ग्राम सभा किसानवाड़ी कार्यक्रम कार्यक्रम प्रमुख और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी मन जम्मो श्रोता मन ला स्थापना दिवस के अवसर मा अपन शुभकामना दिन।
3: स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम सभा किसानवाणी के हमारे सभी श्रोता साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है रेडियो ने बहुत सारे क्षेत्रों में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों के लिए नई तकनीक नवाचार चाहे वो पशुपालन हो खेती किसानी हो मुर्गी पालन हो या किस कृषि से जुड़ा कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो हर क्षेत्र में किस ढंग से किसान अपनी उन्नति कर सकते हैं मुनाफा कर सकते हैं मुनाफा कमा सकते हैं इस क्षेत्र में रेडियो ने महत्वपूर्ण योगदान किया है पिछले कई सालों से लगातार और निश्चित रूप से आज भी खेती की बात ग्राम सभा किसान वाणी और उससे जुड़े सभी कार्यक्रमों में आप सभी श्रोताओं की जो भागीदारी है उसको हम नमन करते हैं क्योंकि आप ही श्रोता हमारे इस कार्यक्रम की शान है आन है बान है और आपके ही कारण इस कार्यक्रम को हम इतना अच्छा प्रस्तुत कर पाते हैं और हमें उम्मीद है कि हम लगातार कृषि के क्षेत्र में नए से नए कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे और हमारे श्रोता इसी तरह हमसे लगातार जुड़ते रहेंगे। आकाशवाणी की 103.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों को सुनते हुए आप अपने जीवन में शिक्षा सूचना और मनोरंजन तीनों ही प्राप्त करेंगे इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: ये तो हुई आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस के अवसर में विशेष कार्यक्रम कार्यक्रम के प्रस्तुति रही से गोपाल कृष्ण पांडे
4: और अभिनव गौरा के
2: संयोजन रही से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। तभी हमर संगवारी मन लेवा आप मन बर सुघर गीतला लाथन जिला स्वर से सजाए है कविता हिरकने ओकर संगवारी मन।

तो संगवारी हो ए रही से सुघर गीत जिला स्वर से सजाए रहे हैं कविता हिरकने ओखर संगवारी मन। अब आप मन ला मौसम के हालचाल बता दी भाई, मौसम के हालचाल बढ़िया। अब मौसम के हालचाल बता था, तापमान है कम हो है, आज के अधिकतम तापमान ला बताई तो 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रही से, न्यूनतम दर्ज करेगी 24.0 डिग्री सेल्सियस। अब आप मतलब बता दी कि 4 मई से मतलब अवैया कल ले आगु 9 मई तक थोकन बादर पानी बने रहे की संभावना है, तो देखभाल के अपन काम बूता ल करिया। आओ बढ़िया स्वस्थ रह, मस्त रह, काम बूता में व्यस्त रह, तेखरे संग देवा आप मन जितू भाईला कार्यक्रम ले विदा। राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए गीत और गजलों को।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए गीत और गजलों को।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, आज कार्यक्रम में यादें और बातें भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री, जिन्हें विशेष रूप से फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के लिए जाना जाता है, वे थी नरगिस दत्त। आज 3 मई को इनकी पुण्यतिथि है। आज का रजनीगंधा हमने केंद्रित किया है नरगिस जी की यादों और बातों के साथ।

नरगिस का पूरा नाम फातिमा राशिद था। इनका जन्म 1 जून सन 1929 को कलकत्ता में हुआ। नरगिस ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बचपन में ही फिल्म तलाश हक से की थी। नरगिस की मां एक मशहूर गायिका जद्दनबाई थी। कला उन्हें विरासत में मिली। सन 1940 और 50 के दशक में नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सबसे चर्चित सफल फिल्म रही 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। इस फिल्म में उन्होंने राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया सशक्त रूप देने वाली महान अभिनेत्री कहलाई। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था।

0: दुख भरे दिन बीतेरे भैया।
1: नरगिस की प्रमुख फिल्में अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेशी, चोरी चोरी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से हिंदी फिल्मों की सफल जोड़ी थी।

नरगिस को पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इनमें रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कहते हैं कि मदर इंडिया के सेट पर आग लगने पर सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी। उसके बाद नरगिस का विवाह सुनील दत्त के साथ हुआ। उनके तीन बच्चे हैं, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। नरगिस ने अपना आगे का जीवन परिवार और समाज को दिया। वे विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों और कैंसर रोगियों के लिए काम किया करती थी। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें 1980 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वे इस तरह का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री थीं।

नरगिस ने अपने पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रब की स्थापना की। यह दल सीमाओं पर जाकर जवानों के लिए मनोरंजन स्टेज शो करता था। नरगिस बेहद संवेदनशील और इनके अभिनय में सहजता स्वाभाविकता झलकती थी। अपनी भावपूर्ण आंखों से पर्दे पर बेहद खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर उन्होंने अमिट छाप बनाई

नरगिस का निधन 3 मई 1981 को कैंसर की वजह से हुआ। उनके पुत्र संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी उनके मृत्यु के 3 दिन बाद रिलीज हुई। अपने बेटे को अभिनेता के रूप में देखने के पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज संजय दत्त एक बड़े सुपरस्टार है। नरगिस अपनी खूबसूरती और अभिनय से फिल्मी दुनिया में अपनी यादगार फिल्में छोड़ गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गानों को।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों, बातों और यादों के साथ आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अब दीजिए अनुमति अपनी साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में ये समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रेंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और

0: बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
3: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल्द भूमध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।

0: security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat hosts Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And that's all in the news at 9. Good night.
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

राम और श्याम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। शकील पतायुनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। यह है वीर दुर्गादास फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में वीर दुर्गादास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भरत व्यास की ये रचना थी और एसएन त्रिपाठी की तर्ज। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984

0: दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: काजल है
4: आपके लिए कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुरानी फिल्म का ये गीत।

बहुरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। इसे साहिल लुधियानवी ने लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

शफकत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म

हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके चार बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की दो फिल्में आईं, एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

0: प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी

0: हमारी।
1: चाय या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भरभरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले, हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: करना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
0: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: رات सुनिए
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात सुनिए अपनी पसंद के गाने
3: सुरीली यात्रा है यह जीवन संग जो है विविध भारती मन भावन अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: चार के साथ मैं वैष्णवी।

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातः आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।